107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बुधवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, दसवीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ESI अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर OFC कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान

0: मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

0: वापसी कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचनाएं।

0: इसी देशगान के साथ ये कार्यक्रम वंदन वार अब यहीं संपन्न हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी चंडीगढ़ से जो कार्यक्रम दिन भर आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे उन कार्यक्रमों के बारे में पहले आपको बता दें, सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आपके लिए पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दिन में 11:00।

संजीवनी प्रोग्राम में दिन में 11:30 पर डॉक्टर श्रुति जानकारी देंगी गट हेल्थ के बारे में। 12:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, 1:15 पर सुनेंगे फिल्म

स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार लिखे जाएंगे।

शाम 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाते हैं। 6:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाएगा शाम 6:30 पर। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए सुरसांझ कार्यक्रम में कुछ पंजाबी गीत। और अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे भोले बिस्तरे गीत। 7:30 हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे सुबह 8 बजे। 8:15 पर सुनिए प्रोग्राम त्रिवेणी, और यही प्रोग्राम दोपहर

दो बजे 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 236। आप सुनेंगे

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संगीत परंपरा में यदि किसी वाद्य को प्रकृति की सहजता, मानवीय संवेदनाओं की कोमलता और आत्मा की गहनतम अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है तो वो है बांसुरी। बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अनंत धारा का मधुर स्वर है, श्वास का संगीत है। ये प्रकृति की निस्तब्धता को भी मधुर अभिव्यक्ति दे देती है। इसकी ध्वनि में कभी यमुना के तट पर गूंजती कृष्ण की दिव्य लीला का आह्वान सुनाई देता है तो कभी वन उपवनों में बहती समीर की मृदुल सरगम। बांसुरी की तान मानव हृदय के उन भावों को भी अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। इसकी ध्वनि में मिट्टी की सोंधी सुगंध और जनमानस की सरल भावनाएं समाहित रहती हैं। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं अपनी विलक्षण साधना और अद्भुत प्रस्तुति शैली के माध्यम से बांसुरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो हम जैसे सुर सरिता में अवगाहन करते हैं, मन दीन दुनिया से बेखबर होकर साधना में लीन हो जाता है। पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, जिनका पूरा नाम रणेंद्र भानु मजुमदार है, आप भारतीय संगीत जगत के ऐसे अनुपम साधक हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों धाराओं को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है। उनकी बांसुरी से निकलने वाले स्वर मानो प्रकृति की शांत सरिता की तरह हृदय को स्पर्श करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बांसुरी की दुनिया में कई नए प्रयोग किए, एक नई दिशा दी। फिल्म संगीत में भी पंडित रोनू मजुमदार ने बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया। उनकी धुनों में कहीं प्रेम की कोमलता है तो कहीं लोक जीवन की मिट्टी की सोंधी सुगंध। लोक संगीत में उनकी बांसुरी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा को जीवंत कर देती है। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की सुरीली कड़ियां पिरोने के लिए हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी को, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कुमार गंधर्व पुरस्कार के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से ये सिद्ध किया है कि बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं बल्कि आत्मा और संवेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। पंडित जी के साथ तबले पर हैं अजीत पाठक जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं, और बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला और हम स्वागत कर रहे हैं पंडित रोनू मजुमदार जी का। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। कुछ बातचीत, कुछ संगीत की चर्चा तो होगी ही
1: जी। और अब हम अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अजीत जी, स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और अब बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। कल्पेश जी, नमस्कार, स्वागत।
4: जी नमस्कार।
1: तो अब हम शुरू करते हैं। रोनूदा, आप ये बताइए कि आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बांसुरी का खजाना खोलेंगे तो सबसे पहले खजाने से कौन से मोती निकालेंगे। हमें तो आपकी ही बांसुरी का वो गाना याद आ रहा है, खाली हाथ शाम आई है, इजाजत फिल्म का गाना, जिस पर आपकी बड़ी सुरीली तान सुनाई पड़ती है। आप क्या कहेंगे?
2: ये एक ऐसा गाना पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। उसके पहले भी मैंने आशा जी के साथ बहुत गाने बजाए, मगर इस गाने ने मेरी उनसे दोस्ती करवा दी।
1: जी जी,
2: मतलब वो मेरी माँ भी थी और दोस्त भी थी, मन की बातें मुझसे साझा करती थी, सुख दुख की हर बातें मेरे साथ करती थी।
1: जी।
2: और जैसे ही मैंने बजाया, वो सिंगर बूथ उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो, इतने बड़े हॉल में 150 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ऐसा माहौल था।
1: जी।
2: तो सिंगर बूथ से निकली और सबसे पहले मेरे पास आई, तो पहले वो उन्होंने पूछा कि अरे तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने गुरुओं का नाम मैंने बताया, बोली कि सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगी कि जैसे मैं मुखड़ा गा रही थी, जितनी वैरायटी विविधता मैं कर रही थी, उससे अलग हटके तुमने कैसे सोचा? मैंने तो सारी वैरायटी, मुझे लगा कि मैंने गा दिया, मैंने भी जो एक भाव शुरू से वैसा ही था।
1: जी जी।
2: एक फक्कड़पना शुरू से था। मैंने कहा दीदी ये तो सागर है, इसका था कहां से मिलेगा, ये तो जितना डूबेंगे उतना और गहराई मिलेगा। बोली बहुत अच्छा, तुम घर आओ। तो उसके बाद प्रभु कुंज में जाने लगा मैं।
1: जी।
2: ये लोग सारी बहने तब प्रभु कुंज पेटर रोड में रहते थे।
1: जी बिल्कुल
2: जी। लता जी को भी मालूम था कि मैं आशा जी से बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे ही मैं जाता था तो बोलती थी तू आशा से मिलने आया है ना। तो एक अजीब सा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा खाली हाथ शाम आई का बजा के सुना रहा हूँ।
1: जी जी।

0: वाह पंडित जी, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। और सचमुच जब फिल्मी गाना सुनते हैं खाली हाथ शाम आई तो भी हम यहाँ स्टूडियो में सुनकर सचमुच अभिभूत हो गए। तो अब बताइए, अब क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 1990 आते आते क्लासिकल 16 तो मैं पहले से ही था, ये नहीं कि फिल्म में मैं पहले बजाया और फिर क्लासिकल। क्लासिकल तो मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मगर नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी। तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है
1: क्या, कौन बजाएगा ऐसे
0: जी?
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब पंचम दास चले गए तो लोगों को मालूम पड़ा कि दिल पड़ोसी है
0: जी
1: क्या एल्बम था
0: जी।
1: उसमें एक गाना था गुलजार साहब का लिखा हुआ, सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना।
0: वाह, तो ये आप बजा के सुनाएंगे?
1: मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ
0: जी।
1: तो उस गाने की खास बात ये थी कि मैं था अमेरिका में और उन्होंने और भी बांसुरी वादक थे
0: जी
1: जिससे बजवा सकते थे, वो लोग ये थे वो थे, सभी अच्छे हैं, बुरा तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल
1: सभी अपने हिसाब से अच्छा ही बजाना चाहते हैं। मगर मेरे लिए इंतजार किया,
0: क्या बात है,
1: ये गाना तो अमेरिका से आ जाएगा तो ही होगा रिकॉर्ड।
0: वाह।
1: और फिर वो आशा जी की मेरी जुगलबंदी हो गई
0: जी, जी।
1: ऐसा नहीं लगा कि मैं संगतकार हूँ, मैं उसमें छोटा सा पीस बजा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता
0: जी।
1: तो मैं सातों बार मैं सुना रहा हूँ आपको
0: जी। स्वागत।

0: वाह दादा, आपने तो फिर एक बार अभिभूत कर दिया। और बस दिल पड़ोसी एल्बम का ये जो सुरीली तान आपने छेड़ी, बहुत अद्भुत थी। तो अब आज की इस कड़ी को यहीं समेटते हैं, श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोग

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत बस थोड़ी ही देर में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आइए आपको सुनवाते हैं पहली तारीख फिल्म का ये गीत, क्योंकि आज है पहली तारीख जुलाई की। किशोर कुमार का गाया गीत, कमर जलालाबादी के बोल है, सुधीर फड़के का संगीत।
2: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना आज पे।

बाबू खूब पैसा जरा लाना, खूब पैसा जरा लाना लाना लाना, खूब पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना जेब।

कोई नहीं रास्ते, खेती को गम है कि पैसों चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, टूटेगा खजाना आज पहली तारीख है, कुछ है समान आज पहली।

कबड्डी खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस

0: भी खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, आज है संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन, उन्हें याद करते हुए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम भूले पिछले गीत में। आगे के सारे गीत उन्हीं के संगीत बद किए हुए। सुनिए ये गीत पुनर्मिलन फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गुलशन बावरा के बोल हैं, सी अर्जुन का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सुशीला फिल्म का गीत। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, इंदिवर ने रचना की है और सी अर्जुन का संगीतबद्ध किया गीत है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म का गीत जिसे गाया है उषा मंगेशकर और साथियों ने। प्रदीप का लिखा गीत है और तर्ज बनाई है सी अर्जुन ने।

मैं और मेरा भाई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में। जान निसार अख्तर के बोल थे, सी अर्जुन का संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। प्रदीप ने इस गीत के बोल लिखे हैं, सी अर्जुन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आंख का तारा।

0: एक साल पहले इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इंदिवर की रचना थी सी अर्जुन का संगीत और ये गीत बना कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की आखिरी प्रस्तुति।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, बस थोड़ी ही देर।

0: में लेकर हाजिर होंगे।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो साथी पूजा नारायणिया। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले गीत अधिकार फिल्म का। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत है। गीत के बोल लिखे हैं रमेश पंत ने और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म अंदाज से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे बोल और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

kid.

0: जब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना, धक धक धक पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से,
1: हाय मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर मजदूर सुल्तानपुरी के बोलों को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना बुढ़ा मिल गया इस फिल्म से।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का हमें राही प्यार के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कारवां फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आरजी बर्मन का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी के बोल। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जाने अनजाने फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत की रचना की, शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच

0: द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई

0: सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET

0: समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हो चुके हैं। अगला प्रोग्राम है त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप लगातार सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए

श्रोताओं गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम चुचुलोक में आप सभी विविध भारती सुनने वालों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नारायणिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म फिजा से। गुलजार के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाजें।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं और पेड़ लगाना, हरित भविष्य में योगदान देना, ये कार्य मिलकर करते हैं। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक बन गया है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि यह जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है, हम सबको जागरूक करता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है, जोड़ता है। वन महोत्सव एक अखिल भारतीय वृक्षारोपण उत्सव है जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इस पहल को 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉ. K.M. मुंशी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। तभी से वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह समय भारत के कई हिस्सों में मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है। बारिश नए लगाए गए पौधों को जड़ जमाने और सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां जो प्रदान करती है। भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, विस्तारित बुनियादी ढांचा और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण पर्यावरण बहाली की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। हरियाली समग्र रूप से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। दोस्तों, चूंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वनस्पति का संरक्षण करना और स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। आइए मिलकर हम ये वन उत्सव मनाते हैं।

ए.आर. रहमान के संगीत से सजा आनंद बख्शी के बोलों से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम ताल।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चचलोक में एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, एक रिश्ता द बॉन्ड फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के ही स्वरों में ये गीत समीर के बोल हैं।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अलबेला फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या

0: हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: जाने की जस्बी, गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा,
3: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वभर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है।

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत, अलका याग्निक अभिजीत की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है जुदाई।

बॉम्बे फिल्म से गीत चित्रा की आवाज में महबूब के बोल ए आर रहमान की बनाई धुन।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

0: जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
3: दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूं आपका साथ ही अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स आपके लिए प्ले करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, और इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि गर्मी से बेहाल, उमस से परेशान, ऐसे में राहत मिल जाए। जी, आज से राहत के आसार हैं, आज चैन की सांस मिलेगी। वैसे राहत के आसार तो लग भी रहे हैं, आप बाहर देखिए खुले आसमान में बादल।

0: घिर के आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सब्र कीजिए, हम आ रहे हैं, बरसेंगे और आपको गर्मी से राहत देंगे। मौसम सुहावना है दोस्तों, सुबह से ही मौसम सुहावना है। सरसर बहती हवा जो है तन मन को ठंडक पहुंचा रही है, कह रही है कि बस आ रहा है मानसून, भिगोने को हो जाइए तैयार। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 से 3 दिनों में आ रहा है मानसून। 6 जुलाई से तेज बारिश के आसार बताए गए हैं और आज पंजाब में प्री मानसून बारिश भी हो सकती है। फरीदकोट की बात करें तो फरीदकोट तो 43.8 डिग्री सेल्सियस की हद तक तपता रहा और इस तपिश के बाद अब सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। चंडीगढ़ में भी 2-3 दिन में मानसून दस्तक दे सकता है। शिमला में पड़ी मानसून की पहली फुहार और शिमला के रिज पर जो हैं मौसम बहुत ही शानदार रहा। आज चलेंगी सुहानी ठंडी हवाएं।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे अरे,
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ,

और दोस्तों, मौसम के बाद अब खेल की दुनिया के मौसम की भी बात कर लें। फीफा फुटबॉल कप के बारे में बात करें तो उलटफेर जारी है। राउंड ऑफ 32, चार बार की चैंपियन जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टॉप की टीमें बाहर हो गईं। फ्रांस ने स्वीडन और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। और आज की बात करें तो दोस्तों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे है। ये दिन जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिदान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, चिकित्सा के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान

को याद करने के रूप में यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अमूल्य योगदान को आज सलाम करने का दिन है। और हम आपको बता दें कि 10:05 पर आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, इसी विषय को लेकर हमने रखा है। आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे पर जो हमने विषय चुना है वो चुना है, हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर्स की तो हमारे प्रति जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, बस इस विषय पर आपको हमसे बातें करनी हैं 10:05 पर प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। और आज बहुत सारे दिन हैं, आज इंटरनेशनल जोक डे है, और सबसे बड़ी बात है आज से वन महोत्सव भी शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। और क्योंकि बारिशों का मौसम आ रहा है, मानसून आ रही हैं, ऐसे में पेड़ लगाने का धरती माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के जो दिन हैं वो आ रहे हैं, तो अपने हाथों से एक पौधा लगाएं इस मानसून सीजन में और धरती की हरियाली को बचाएं।

आज का अखबार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस पर नजर दौड़ाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों

के संग बैठक में दिए निर्देश। लोगों का जीवन और कारोबार आसान बनाना सुनिश्चित करें और कहा कि मिलकर काम करें सभी मंत्रालय। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की नई सुविधाएं, पंजीकरण है तो श्रीनगर पहुंचे, नहीं है तो आधार कार्ड लेकर जम्मू उतरें। पंजीकरण ना होने पर ऑल इन वन हब की प्रक्रिया भी। श्रीनगर का पंथा चौक होटल जैसी सुविधा वाला 5 मंजिला यात्री निवास भी तैयार। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। जनरल धीरज सेठ ने 13वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। हेडलाइंस में आगे लिखा है कि बांग्लादेशी सेना का तालिबानीकरण, खलीफाओं के नाम 4 बटालियन भारत सीमा पर तैनाती। अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती रहेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के दमन से भड़के लोग और कहा पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं।

अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। फीफा विश्व कप की बात करें, अफ्रीकी देशों की ऐतिहासिक जीत में नायक बने 5 गुमनाम। पहली बार 10 में से 9 टीमें नॉकआउट में पहुंची। आज से पहला T20 मैच, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ करनी होगी ठोस शुरुआत। वैभव के पदार्पण पर संशय। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, 49 के दिनेश उम्र दराज खिलाड़ी तो 16 की लिशा सबसे युवा। 126 सदस्यीय भारतीय दल जाएगा ग्लासगो। 46 वर्षीय पिंकी भी शामिल। और अब चलते हैं कारोबार जगत में। ऑटो ट्रेंड, देश में 37% नई कारें इलेक्ट्रिक या CNG। GST के 9 साल संग्रह 3 गुना, टैक्स पेयर 2 गुने बढ़े। और सेमीकंडक्टर मिशन 2 को 1.25 लाख करोड़ की मंजूरी। ये तो थी हेडलाइंस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब की बात करें, आज से खातों में पहुंचेगी मामा तियां सत्कार योजना की पहली किस्त। 40 लाख ने कराया पंजीकरण, सामान्य वर्ग को 3,000 और SC महिलाओं को 4,500 रुपए मिलेंगे। आज से 6 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट है पंजाब के लिए। 2 से 3 दिन में सूबे में दस्तक देगा मानसून। 109 बाढ़ संवेदनशील स्थान किए चिन्हित, तटबंधों पर बढ़ाई निगरानी। पाकिस्तान से आई 1.17 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब में 1013 लेक्चरर भर्ती का रास्ता साफ, आज से शुरू होंगे आवेदन। पंजाब के बाद अब चलते हैं हरियाणा की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारायणगढ़ में 114 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अंबाला के गांव धनयौड़ा में 4 वर्षीय मासूम 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरा। सेना, NDRF, SDRF और जिला प्रशासन ने चलाया है बचाव अभियान। डिजिटल कैमरे से निगरानी हो रही है और ऑक्सीजन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय विभाग की समीक्षा में तय की प्राथमिकताएं। शहरों का नया ब्लूप्रिंट तैयार, अगले 5 साल में बदलेगी तस्वीर। आज से

37 दिन बाद फिर खुले हरियाणा के स्कूल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बच्चे स्कूल लौटे। हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 980 करोड़। और हरियाणा में वरिष्ठ क्लर्कों को 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट। और हरियाणा में सरकारी स्तर पर पहली बार आयोजित होगा हरियाणा फिल्म महोत्सव। छात्रों और स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए एक नया मंच। अब चलते हैं पंजाब हरियाणा के बाद हिमाचल की ओर। कुल्लू के सरकारी अस्पताल की डॉक्टर निलंबित। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर कड़ी कार्रवाई। रामपुर बुशहर सपना शर्मा नगर पंचायत निर्मंड की अध्यक्ष बनी। शिमला स्कूल संचालिका हत्याकांड मामला। भाई ने रची बहन की हत्या की साजिश। गिरफ्तार किया गया इस मामले में। और हिमाचल में मानसून की एंट्री हो गई। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।

और अब एक नजर आज की लोकल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। लोकल हेडलाइंस में लिखा है, 3 बच्चों के साथ नहर में कूदी मां, गोताखोरों ने महिला को बचाया, 2 बच्चों के शव मिले। मोहाली जिले के मटौर गांव की शकुंतला उर्फ सुमन ने सोमवार दोपहर अपने 3 बच्चों के साथ रोपड़ नहर में छलांग लगा दी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का विशेष कैंप आज से, चंडीगढ़ के भविष्य का खाका, दिल्ली में हाई राइज से FAR तक हुई चर्चा। आज हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं ट्राई सिटी में। 4 लाख से ज्यादा लंबित मामलों संग आज से फिर खुलेगा हाई कोर्ट। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियमित सुनवाई आज से शुरू। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 सप्ताह का रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा, 50 छात्रों ने लिया हिस्सा।

0: और चलते चलते दोस्तों शहर के मौसम पर एक नजर डाल लें। आज मौसम विभाग ने शहर के लिए कहा है कि हो सकती है बारिश, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी। शहर में 1 से 6 जुलाई तक भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार सक्रियता बढ़ने से अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। लोगों का मानसून का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा। उमस बढ़ने में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई है। आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग ने बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये है मौसम शहर का। फिलहाल आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी

0: मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता त्रिका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे।

और आज डॉक्टर्स को सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे है। ये दिन जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय की याद के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अमूल्य योगदान को आज सलाम करने का दिन है। वैसे तो हर रोज़ हर घड़ी हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि वो जन स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और लगातार देश का जो स्वास्थ्य है वो पटरी पर दौड़ता रहे, इसके लिए वो दिन रात जो हैं लगातार काम करते रहते हैं। तो आज इस मौके पर हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। अब डॉक्टर्स को तो हम उसकी जिम्मेदारियां आए दिन बताते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया।

0: चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अमूल्य योगदान को आज सलाम करने का दिन है। वैसे तो हर रोज हर घड़ी हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि वो जन स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और लगातार देश का जो स्वास्थ्य है वो पटरी पर दौड़ता रहे, इसके लिए वो दिन रात जो हैं लगातार काम करते रहते हैं। तो आज इस मौके पर हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। अब डॉक्टर्स को तो हम उसकी जिम्मेदारियां आए दिन बताते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसे हो सकता था, लेकिन डॉक्टर के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसे भी समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन हमने ये टॉपिक चुना है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं। आइए उन पर एक नज़र दौड़ाएं, गौर करें, चर्चा करें आप सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर आकाशवाणी चंडीगढ़ की ओर से तमाम डॉक्टर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम के पहले जो लिसनर हैं वो आ चुके हैं, कॉलर आ चुके हैं।
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: राकेश जी, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है, बारिश हो रही है।
0: जी बिल्कुल, और आज की अखबार में खबर है कि हिमाचल में मानसून दस्तक दे चुका है।
1: जी जी जी जी जी जी,
0: अब होगी झमाझम बारिश।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झमाझम बारिश होगी और हो रही है बारिश।
0: चलिए अच्छी बात है, बारिश भी समय पर होनी चाहिए। और जी, आज डॉक्टर्स डे पर जो हमने टॉपिक चुना है उसके बारे में आपको मालूम है ना?
1: जी जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए फिर क्या कहना चाहेंगे?
1: जी तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो है हमारे लिए भगवान का रूप है, तो इस उसके लिए हम पहले भगवान को हम प्रणाम करते, तो हमें भगवान को प्रणाम तो करते हैं, हमें डॉक्टर को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर ना होते तो हमारा जीवन नहीं बचता। क्योंकि आज हम छोटे मोटी बीमारी से हम लड़ रहे हैं तो डॉक्टर की वजह से हम जो है अपना जो है जीवन जी रहे हैं।
0: नहीं देखिए, देखिए राकेश जी, ये तो आप डॉक्टर्स का रोल क्या है हमारे जीवन में वो बता रहे हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी क्या है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए।
1: सबकी जिम्मेदारी इसमें बात बारी बारी से बात, हमारे सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमें जैसे हम अस्पताल में जाते हैं, सबसे जिम्मेदारी है कि हमें जैसे हम लाइन पे लगते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि थोड़ा हमें समझना चाहिए कि देखो बारी बारी से पेशेंट को जो है देखा जाएगा। जैसे कि अब देखो कोई पेशेंट ज्यादा सीरियस है तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपना काम निपटा देते हैं, पहले हमें उन मरीजों को देखना चाहिए जो सीरियस है, पहले हम अपना काम हम बाद में निपटा सकते हैं, पहले हमें उन मरीजों को हमें उनका जो अगर मानो कि हमें अपनी सीट उनको शेयर करनी चाहिए तो कोई बेचारा बड़ा ये पेशेंट सीरियस है तो पहले डॉक्टर को हमें डॉक्टर के इंसाब की इनका पहले उनका इलाज हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी अप्रोच लाए कि नहीं हमारा काम जल्दी कर लो हमने जाना, ये नहीं करना चाहिए। फिर हम कई बार क्या करते हैं, हम नर्स को जो है नर्स स्टाफ को जो है चौड़े हो जाते हैं कि देखो हमारा काम पहले होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए देखो वो भी मरीज है हम भी मरीज है, इसलिए हमें समझना चाहिए इस चीज को।
0: बिल्कुल सही है, और इतनी सी बात अगर समझ आ जाए सभी को। हालांकि जो डॉक्टर के पास जाता है जाहिर सी बात है किसी न किसी मुश्किल के लिए जाता है, मुश्किल को हल करने के लिए जाता है, और ऐसे में इंतजार भी कई बार मुश्किल हो जाता है।
1: सर एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो कि मेरे को छोटी मोटी प्रॉब्लम है या मेरे को छोटा मोटा बुखार है तो हम बाहर क्यों हम वेट नहीं कर सकते, हम वेट करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले हम उनको जो जो ज्यादा सीरियस है, जिसका ज्यादा सीरियस है पेशेंट बेहोश है, तो अगर डॉक्टर हम छोटे मोटी बीमारी को हम देखेंगे तो फिर हो सकता है कि पेशेंट जो है जल्दी आखिरी सांस भी छोड़ सकता है। मानो कि डॉक्टर के पास दो मिनट अगर पहुंचना जाए तो फिर उसका क्या होता है। पहले हमें ये समझते हैं कि चलो पहले इनका इलाज

0: जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सही जिम्मेदारी आपने समझी।
1: जी जी,
0: शुक्रिया आपका बात करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़, नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। जी
2: सर नमस्कार। सर
0: जी नमस्कार, वेलकम।
2: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सेक्टर 51 से। सर
0: जी सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं आज सबसे पहले तो सर सभी डॉक्टर्स को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ कि वो मानव के लिए कितनी मदद करते हैं और एक नया जीवन देते हैं
0: जी,
2: अपनी सेवाएं देकर।
0: जी जी, और क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
2: मैं कहना चाहता हूँ सर, कोई तकलीफ होती है हमें या हमारे किसी परिजन को, तो हम जब वहाँ ले जाते हैं उनके क्लिनिक पे या अस्पताल में, तो हमें बड़े धैर्य से उनको डॉक्टर साहब को तकलीफ बतानी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनको अपना काम करने देना चाहिए, ना कि हम अपनी सजेशन देते जाएं कि ऐसा है ये है वो है। पहले बात सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर हम इलाज के दौरान उनको डिस्टर्ब ना करें ताकि हमें पूरा पूरा आराम मिल सके। वो तो चाहते हैं कि इलाज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए मरीज, तो ये मेरी बड़ी कामना है कि वो बहुत ही ख्याल रखते हैं, हम उनके बड़े आभारी हैं सर।
0: जी, और सुरेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम नाराज हो जाते हैं कि डॉक्टर अभी तक सीट पर नहीं आए, ओ पत्नी कहाँ रह गए, हम इतनी देर से खड़े हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स अपने मरीजों को देखने के बाद ओपीडी में आएंगे और हो सकता है कि कोई मरीज थोड़ा ज्यादा ही बीमार हो, उसे देखते देखते टाइम लग गया हो।
2: जी जी,
0: है ना, तो जिम्मेदारी डॉक्टर पर बहुत सारी होती है जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं।
2: हाँ जी,
0: उनको मरीजों को देखना भी है, ऑपरेशंस का भी काम है, दवाइयों का भी काम है, फिर रिसर्च का भी काम है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी हमें डॉक्टर के क्लिनिक जाकर या अस्पताल जाकर थोड़ा सा हमें संयम रखना चाहिए, अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए।
2: जी जी,
0: तो इस तरह के इस तरह का नियंत्रण जब हम रखते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है, तो उस माहौल में आप भी खुश रहते हैं, डॉक्टर भी खुश रहता है, तो खुशी खुशी से सारा काम संपन्न होता है,
2: हो भी जाता है और हमें आराम भी मिल जाता है सर। दूसरी चीज सर, ये
0: कई लोग बिना सोचे समझे बवाल खड़ा कर देते हैं।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: है ना, गुस्सा होने लगते हैं,
2: उल्टी हो जाती
0: है, हालांकि उनकी भी मनोस्थिति समझ आती है कि भाई बहुत देर हो गई होगी, बहुत दूर से आए होंगे, लेकिन ये सब चीजें हैं, डॉक्टर्स भी मजबूर हैं, उनके पास भी बहुत काम है।
2: जी जी,
0: तो ये एक बीच का रास्ता निकाल के हमें हर समस्या का समाधान करना होगा इस मामले में।
2: जी जी सर, इस बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर साहब के पास तो काफी मरीज होते हैं और उनको ख्याल होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना सबको उनका इलाज कर सकूं, बाहर लाइन लगी होती तो कुछ लोग जल्दी से अपनी जल्दी कारण लाइन में आ जाते हैं और फिर परेशानी ये हो जाती है कि वहाँ माहौल दूसरा हो जाता है, उनको कठिनाई हो जाती है, डॉक्टर साहब को भी डिस्टरबेंस होता है कि ये बाहर क्या हो रहा है, वो कुछ सुन नहीं पाते कि क्या है कि कौन है, तो मुझे अपना काम पूरा करना है, तो शांत वातावरण।
0: बिल्कुल शांत वातावरण बना के रखें
2: जी।
0: और देखिए डॉक्टर को रब दा रूप तो असि मानते हैं, हम कहते हैं कि रब दा रूप है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर के भी अंदर एक दिल धड़कता है
2: जी, इंसान है,
0: उसकी भी कुछ क्या कहते हैं भावनाएं हैं, उसे भी गुस्सा आ सकता है, वो उसके भी खुशी अच्छी लगती है, उसे भी माहौल अच्छा लगता है
2: जी।
0: तो हमें इस तरह का माहौल बना के रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तो डॉक्टर का साथ हमारी जिंदगी में बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम भूल नहीं सकते, और क्योंकि डॉक्टरों की जिम्मेदारी है हमारे स्वास्थ्य को पटरी पर दौड़ाए रखना, और ऐसे में हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया जी,
2: जी, जी, जी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर हम डॉक्टर्स को सलाम कर रहे हैं और टॉपिक हमने चुना है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है। डॉक्टर की तो हमारे प्रति हैं लेकिन हमारी क्या है, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आप क्या महसूस करते हैं जब आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, जब किसी अस्पताल में जाते हैं, तो हमसे ज़रूर शेयर करें। नंबर से एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार अनिल जी।
0: जी नमस्कार जी, वेलकम
1: जी। मैं सिर्फ बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला 4 सेक्टर से।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
1: पहले बता दो, जैसे डॉक्टर को हम चाहते ही कहते हैं कि ये मेरा नाम है, डॉक्टर साहब नमस्कार, इसलिए आपको भी वैसे ही नमस्कार। बहुत बड़ा दिन है आज, खाली डॉक्टर ही नहीं, जो कहते हैं ना एंजल्स इन वाइट डॉक्टर्स को
0: जी,
1: पर एंजल्स इन ब्लू जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, सब सारे इसी में आते हैं। एक एक मेडिकल फ्रेटर्निटी का वर्कर इसके अंदर आता है,
0: मेडिकल प्रोफेशनल्स।
1: हाँ, जितने भी फ्रेटर्निटी है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, आज के दिन सबको हमारा सलाम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज डॉक्टर का आपके जीवन में क्या महत्व है, आप इस प्रोग्राम में कई बार बता चुकी हैं।
1: अभी आपको बताऊं, जो जब मेरे बेटा हुआ तो उसको बाहर, ब्लू बेबी था, उसको बाहर सांस नहीं आई थी, तो मेरे डॉक्टर साहब ने कंप्लीट स्ट्राइक में खुद ही उसको सांस दिए अपने, और उसको

0: जाके इंक्यूबेटर में डाल आए, बिल्कुल टोटल स्ट्राइक थी
1: जी, बिल्कुल
0: तो
1: सही बात।
0: आज भी मैं उनको फ्लावर्स भेजी है, वो दोनों डॉक्टर हैं मेरे, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जैसे फरिश्ते जमीन पर कभी कभी आते हैं, पर आते रहो। और जैसे डॉक्टर्स मेरे काफी मेरी दोस्ती भी हैं, और अभी मेरी सर्जरी हुई तो काफी मैं उनको आदर मान देती हूँ। ऐसा है अनिल जी, अगर हम डिसिप्लिन्ड पेशेंट होंगे ना तो डॉक्टर भी आपको मिलके खुश होगा। क्योंकि कई बार कैसे मैंने देखा है कि जी मेरा थायराइड तब ठीक हो गया था इसलिए दवाई मैंने छोड़ दी।
1: खुद डॉक्टर बन गए।
0: हाँ नहीं, वो डॉक्टर कहते हैं दवाई से ठीक हुए थे तो दवाई क्यों छोड़ी, नहीं जी सारे फलाने ने कहा कि ये छोड़ दो नहीं तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। मेरे को कोई ऐसे बोले तो मैं कहती हूँ, किसी को मेरे को कोई सजेस्ट करे मैं कहती हूँ मांगो तो सलाह दो, मेरे बीच में मत बोलो
1: जी।
0: डिसिप्लिन हो, डॉक्टर के रिकॉर्ड्स करें पूरा, उसकी मुश्किल को भी समझें।
1: मेरे और डॉक्टर के बीच में मत बोलो।
0: हाँ नहीं, वैसे भी मेरी हेल्थ मेरे को काफी इश्यूज हैं, पर मैं किसी को कुछ बताती भी नहीं और बोलने भी नहीं देती। आप देखिए छोटी सी बात है, मेरा फ्रंट का एक दांत टूट गया, इम्प्लांट हो चुका है पर 6 महीने बाद दांत लगेगा, तो मैं थोड़ी मजाकिया किस्म की, हर कोई कहता है दांत का क्या हुआ, मैं कहा मिल्क टीथ नहीं टूटने कभी, ये दूर के दांत है। तो डॉक्टर के पास कोऑपरेटिव हो सबसे बड़ी बात ये है।
1: बेरी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, 100 बातों की आपने एक बात कही कि अनुशासित मरीज बनना हाँ, चाहिए।
0: डॉक्टर चाहेगा कि उससे मैं बात करूं, उसको देखूं, ठीक है, और अगर हम अपनी मारी जाएंगे या फलाने ने कहा था, सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है किसी ने ये कहा कि ये कर लो, आप कौन होते हो कहने वाले हमारे और डॉक्टर के बीच में
1: जी,
0: ठीक है ना, इसलिए अपने आप को एक जगह। दूसरा मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, स्टिक रखो अपने आप को, जैसे फेथ और डॉक्टर इकट्ठे चलते हैं, कहते गॉड को कहते हैं ही ट्रीट्स बट ही क्योर्स, जो डॉक्टर है उसके आगे टोटल सरेंडर कर दें, फेथ रखेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे।
1: बिल्कुल, एक रिदम में चलें,
0: रिदम में चलें, ये नहीं होता आज ये डॉक्टर पकड़ा कल वो पकड़ा
1: जी। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम।
0: नहीं नहीं, ऐसे अनिल जी देखो मेरे को 36 साल हो गए, मैं डायबिटिक हूँ हाँ। पर मैं अपने जब से एक डॉक्टर पकड़े हैं इधर उधर नहीं जाती, कोई कुछ बोल ली जाए, एक तो स्टिक करें डॉक्टर के पास, फेथ रखें उस पे, मरीज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पे फेथ रखें, अपनी ना मारे
1: जी। ये हाँ। भी एक अच्छा आपने बताया कि अपनी ना मारे,
0: अपनी ना मारे,
1: ये जो जिम्मेदारी ये भी हमारी एक जिम्मेदारी डॉक्टर के प्रति।
0: बिल्कुल, ऐसे एक बार अनिल जी मेरे मदर एडमिट थे तो सामने एक एसपी थे बने, तो उनके ना कोई बात हो गई, वो सारे उनके जितने लोग थे टेनेंट, उन्होंने डॉक्टर का सारा रिक्वायरमेंट तोड़ दिया और हाथ भी उठाया, छोड़ दीजिए ये जो रैश बिहेवियर है ना, डॉक्टर के साथ कभी मत करिए क्योंकि आपकी जिंदगी उनके हाथ में है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि अगर हम उनकी कोई उनको ऊंचा बोलेंगे, गंदी बात बोलेंगे, कुछ है हमारे लिए तो उसी टाइम वही भगवान है
1: जी, बिल्कुल
0: अगर
1: सही
0: हम
1: है।
0: उसको नाराज कर देंगे हो सकता है कि वो हमारा भी गलत चाहे
1: जी। तो आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं,
0: बहुत प्रोग्राम है हमारे, निभाइए उसको
1: जी जी जी जी, और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, और जो आप जिम्मेदारी निभाती हैं बात करने के लिए उसके लिए भी आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू, थैंक यू।

0: स्वागत है दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हेलो चंडीगढ़ में। और आज का टॉपिक हमने डॉक्टर्स डे को ध्यान में रखते हुए चुना है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। हेलो चंडीगढ़,
1: अनिल भाई को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार।
0: यश कुमार वर्मा जी वेलकम, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: आज तो अच्छे लग रहे हैं आप, बात करते हो।
1: डॉक्टर्स डे भी है
0: तो एक अलग एनर्जी आ गई।
1: एनर्जी आ गई और बारिश भी हो रही है।
0: बारिश हो रही है तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: 3 तारीख में बारिश पड़ रही है।
0: तो हमने तो अभी

0: आज का अखबार में ये कहा था कि बारिश होगी, राहत मिलेगी, मतलब मिल गई।
1: प्रथम आज का खबर सुना था कि तीन चार दिन से मौसम अच्छा बन जाएगा।
0: चलिए फिर आज के टॉपिक के बारे में बात कर लें यश बाबू।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टरों के प्रति तो अनिल भाई ऐसा होता है कि जितनी भी प्रगति ना परमात्मा के पास डॉक्टर के नाम होता है।
0: जी जी जी। जो हमारी जिम्मेदारी उसके बारे में बताइएगा।
1: जी हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाइनें लगी होती है वहाँ पे, तो डॉक्टर बताता है मैंने सभी को पेशेंट को बिल्कुल आराम से चेक करना है और टाइम से चेक करता है। लेकिन हम दूसरे क्या होते हैं, मेरा नंबर कर लो, मेरा नंबर ला दो, मेरा नंबर ला दो, ऐसे काम करते हैं ना, गलत काम लगता है वो। तो डॉक्टर को भी डिस्टर्ब होते हैं वो भी।
0: और वैसे भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर डॉक्टर चाहे एलोपैथी के हों, होम्योपैथी के हों, आयुर्वेद के हों, डॉक्टर डॉक्टर है और शालीनता से उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं वहाँ के माहौल को सबसे पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या जो आप वहाँ पे सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि आपको केवल अपनी परेशानी नजर आती और ये स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर के पास ना जाने कितने लोगों की परेशानी है सुनने के लिए, उनका हल निकालने के लिए।
1: नहीं भाई मैं कभी डॉक्टर को देखता हूँ जैसे तो उनको सोचता हूँ कि ये परेशानी कितनी परेशानी, सभी परेशानियों को दवाई दवाई भी देते हैं और उनका ग्रेट बोल आर्ट्स और हीलिंग हैंड्स और एंडलेस थैंक्स।
0: जी जी जी जी।
1: प्रति
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश बाबू।
1: भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी,
0: क्योंकि डॉक्टर का आना हमारी जिंदगी में किसी नूर के आने से कम नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: दस बजकर 34 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम जारी है, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज का प्रोग्राम है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। तो डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है वो तो डॉक्टर बखूबी समझते हैं और हम समझाते भी रहते हैं आए दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इन्हीं पर चर्चा हो रही है आज के इस प्रोग्राम में। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। मुझे लगता है कि मिलते मिलते रह गया इनका नंबर। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 जुलाई को ये दिन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जो जाने माने चिकित्सक हैं, महान चिकित्सक हैं, बीसी रॉय की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस क्षेत्र में जो उनकी उपलब्धियां रहीं, उन उपलब्धियों को लेकर आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान दिया उसे याद किया जाता है। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़ सर, अनिल सर कैसे हैं
2: जी? बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और रेडियो सेट को धीमा कर लीजिए।
3: सर मैं नवदीप शर्मा बात कर रहा हूँ पिंजौर से।
2: क्या नाम बताया जी आपने?
3: नवदीप शर्मा पिंजौर से।
2: नवदीप शर्मा पिंजौर, पिंजौर कहाँ से?
3: सर पिंजौर शिव कॉलोनी
2: जी। नवदीप जी क्या हाल चाल है?
3: बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए।
2: कहीं रास्ते में?
3: रास्ते में, मैं बद्दी जॉब करता हूँ
2: जी,
3: तो मैं वापस जा रहा हूँ, थोड़ा इमरजेंसी थी तो मैं अभी गाड़ी में आप ही का प्रोग्राम सुन रहा था।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है?
3: बारिश हो रही है सर।
2: तो इमरजेंसी आपने बताया, सब ठीक ठाक है?
3: सब ठीक है सर, सब कुछ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो नवदीप जी आप देखिए बारिश के मौसम में हमारे लिए रुके हैं, इस चैनल के लिए रुके हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो विशेष दिन है उस दिन के बारे में

0: बात करने के लिए आपसे रहा नहीं गया और आप रुक गए।
1: यस सर
0: कहिए क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं तो ये कह रहा था कि सर सबसे पहले तो डॉक्टर्स के प्रति हमारे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए
0: जी,
1: दूसरा होना चाहिए पेशेंस, तीसरा होना चाहिए फेथ
0: जी।
1: अभी एक मैडम से आपकी बात हुई थी, मैडम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब आंसर दिया कि जैसे हमने कई बार सुना होगा कि डेथ होने के बाद कोई लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, हमें जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए
0: जी।
1: कि जब डॉक्टर्स की लाइन में हमारा जो भावनाओं का खेल है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। देखो भावनाएं तो होती है, कई बार ऐसा होता है हम डॉक्टर्स पे गुस्सा होने लग जाते हैं कि नहीं जी ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए था
0: जी, बिल्कुल
1: तो
0: सही है,
1: चीज नहीं होनी चाहिए।
0: और अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो उसके लिए हर तरह के तरीके हैं जहां आप आराम से बात कर सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी,
1: वो गुस्सा होने वाली बात नहीं है, कहीं देखा हमने कि डॉक्टर्स के हाथापाई हो जाती है और वहां की सामान को तोड़ फोड़ना, बिल्कुल ही मतलब नुकसान पहुंचाना, तो दूसरे जो पेशेंट जरा बहुत इमरजेंसी रहे तो उनको दिक्कत हो जाती है।
0: हाँ, आपने तो अपना गुस्सा उतार लिया, लेकिन ये सोचिए कि बाकी मरीजों का क्या होगा।
1: जी सर, जी जी,
0: एक डॉक्टर के अपना एक मूड होता है काम करने का, एक तरीका होता है, उसमें आप विघ्न डाल रहे हैं, ये कानूनी तौर पर भी गलत है।
1: जी सर, जी
0: जी जी,
1: यही तो मैं बताना चाह रहा था।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, आज के टॉपिक के बारे में आपने अपने विचार रखे। नवदीप जी, आपका सफर हमेशा सुहाना रहे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: शुक्रिया।

और वाकई दोस्तों जब एक डॉक्टर हमारी मुश्किल को दूर करता है, हमारा इलाज कर देता है, हमें एक नई जिंदगी दे देता है, तो हम जिंदगी के कारवां से जुड़ जाते हैं और एक नई रवानगी मिल जाती है। तो आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अगले श्रोता से बात करें। हमारा आज का टॉपिक यही है कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और नंबर्स एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं, 2660615, 2660617 और 2660619, ये हमारे नंबर्स हैं। इनमें से किसी एक को मिलाना है और अपने विचार हमसे साझे कर लेना है। तो आज का जो दिन है, इस पेशे से जुड़े जो सभी डॉक्टर हैं, मेडिकल पेशे से जुड़े, उनको शुभकामनाएं देने का है, मंगल कामनाओं का दिन है कि इनका भी स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहे, ये स्वस्थ रहें और सबको स्वास्थ्य लाभ देते रहें। समाज के प्रति डॉक्टर की सेवा समर्पण के लिए उन्हें धन्यवाद करने का दिन तो है ही। ये दिन देश के महान डॉक्टर B.C. Roy को भी समर्पित है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर साल देश में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो पहली जुलाई के दिन हमारा हेलो चंडीगढ़ भी आ गया, तो ऐसे में आज हमने ये टॉपिक आपके लिए चुना। और ये भी कहते हैं कि दवाइयां तो केवल बीमारी को ठीक करती हैं, लेकिन आपके मीठे बोल और हिम्मत ही आधे मरीज को ठीक कर देती है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आप से बात करता है और ज़रा सा अपनापन दिखाता है, तो ऐसे में ही आपको लगता है कि आपकी बीमारी ना जाने कहाँ चली गई। और ये एक तभी हम कहते हैं कि डॉक्टर अपने आप में रबदा रूप है। उसकी वजह यही है कि उनसे मिलते, उनसे बात करते, आपकी आधी समस्या तो वैसे ही दूर होने लगती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला सबके जीवन की रक्षा हमेशा शायद नहीं कर पाता हो, इसलिए उसने धरती पर डॉक्टर को भेज दिया है। और लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं डॉक्टर्स के लिए कि मरहम लगाने वाले और आशा की किरण वाले आप हैं, ये डॉक्टर हैं।

और आज इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स को सलाम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से ये बताया है। और थीम इस बार का यही है कि बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो आज 1 जुलाई को देश भर में ये दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कुछ सांसों की होती है, और ऐसे में डॉक्टर उम्मीद की किरण बनकर आता है और कामयाब होता है, हमें जिंदगी से जोड़ देता है, जिंदगी की लड़ी को फिर से जोड़ देता है। जिंदगी की लड़ी टूटने ना पाए, वो जुड़ी रहे, उसके लिए वो भरकस प्रयास करता है। तो ऐसे में हम ये भी हमें मालूम है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ पर लगातार डटे रहते हैं और कभी 36 घंटे कभी 48 घंटे लगातार ड्यूटी पर रहते हैं। उनकी भी अपनी दुनिया है, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी दिल जो है धड़कते हैं, उनमें भी भावनाएं हैं। तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पीछे के इंसान को भी समझना चाहिए। तो हमारी जो जिम्मेदारी यही हो सकती है कि हम डॉक्टर्स की बताई हुई हर बात को अपने साथ बांधकर रखें, उसे फॉलो करें, जिस तरह से जैसे भी इलाज का तरीका बताया गया है, जब जब बुलाया गया है, फॉलो अप के लिए जब जब कहा गया है, तो हमें उन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। तो उनके लिए हमें ये इतना तो ज़रूर चाहिए कि उनके लिए किसी तरह की मुश्किलें हम पैदा ना करें, और संयम से, बड़े प्यार से, शालीनता से उनके सामने अपनी बात रखें और उनकी बात को सुने। आज के दिन ये सबसे बड़ी जो बात है समर्पण के रूप में, वो हमारी जो सामने आ सकती है, और ये सबसे बड़ा सलाम हो सकता है कि हम डॉक्टर्स के इस पेशे को, नायाब पेशे को समझें और उस तरह से अपनी जो बात है एक डॉक्टर के समक्ष रखें। ये है आज के दिन की सबसे बड़ी बात। तो चलिए अब इस प्रोग्राम में चलते चलते एक और गीत डॉक्टर्स के लिए, उनको सलाम करता हुआ कि वो हमारी जिंदगी में बाहर बनकर आते हैं।

0: और एक हमारे श्रोता जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया सर, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, गोपालपुर सरका घाट हिमाचल।
0: जी नेगी साहब, अक्सर आप प्रोग्राम के आखिर में पहुँचते हैं,
1: है ना? बिल्कुल सही कहा।
0: बस आप जल्दी से नेगी जी, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स अब आने लगी हैं, पहले कॉल्स बंद हो गई थी, अब आ रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से आप अपना मैसेज दे दें कि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए डॉक्टर्स के प्रति।
1: सर ये जो हमारी जिम्मेदारी वही होनी चाहिए सर, जो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है
0: जी,
1: तो कई बार हम जो अरदास करते हैं डॉक्टर से वो हमारी पूरी नहीं हो पाती जी, और हम डॉक्टर से झगड़ा करते हैं, डॉक्टरों को मतलब बुरा भला कहते हैं या उनके साथ हाथापाई भी कर देते हैं। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी निराशा को उम्मीद में की किरण बना बना करके जो भगवान का रूप, जो हमारा भगवान डॉक्टर बन

0: हैं, उनको उनको भी हमें वही मान सम्मान और एहसास करवाना चाहिए कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। एक और श्रोता ऑनलाइन, अगर आप चाहें तो उनसे भी बात कर लें।
0: ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और जल्दी से अपनी बात कहिए।
2: संजय बोल रहा हूँ जी, सेक्टर 13 चंडीगढ़ से।
1: जी संजय जी, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है सर। डॉक्टर साहब का तो जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। मैं तो ऑपरेशन के अंदर के हाल बता सकता हूँ। मेरा ऑपरेशन था नीज का, तो डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा मतलब कि माहौल बना रखा था, कोई कहने की बात नहीं, हंसते हुए। मेरे को पता भी नहीं लगा कैसे मेरा ऑपरेशन हो गया, कब हो गया। मैंने एंड में पूछा हो गया जी, कहते हाँ जी हो गया जी। डॉक्टर साहब इतने जोड़ली टाइम में उन्होंने मेरे को किया कि कहते हैं कि यार बताओ सबसे ज्यादा सुखी बंदा कौन है इस दुनिया में। मैं कह जो डांट खा ले और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे वो सबसे सुखी है। इतने खुश हुए, कहते आज तक ऐसा जवाब हमने सुना ही नहीं।
1: लेकिन लेकिन डॉक्टर की
2: डांट पड़ती है।
1: लेकिन डांट तो सही है, लेकिन डॉक्टर की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं होता, वो महंगा पड़ता है कभी।
2: नहीं नहीं हमें नहीं, वो डॉक्टर को मतलब जो उन्होंने ओवरऑल पूछा कि डॉक्टर की बात नहीं,
1: वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक मरीज और डॉक्टर के नाते ये बात ये कह रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है।
2: हाँ जी, धन्यवाद।

0: और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज का ये प्रोग्राम था कि हमारी डॉक्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। इस प्रोग्राम में आप सब ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
0: अभी आपने सुना लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।
3: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेटियां में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है
4: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
5: इंसान के जीवन में ऐसे बहुत ही कम मौके आते हैं जब इंसान को कोई ना कोई सीख दे जाता है, और जब सीख मिलती है तो इंसान के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। हम अपने जीवन को बुराई से मुड़कर अच्छाई की ओर चलाने में क्षणिक भी देरी ना करें। ऐसा ही हमारे नाटक में एक परिवर्तन बताया गया है जो बुराई से इंसान को अच्छाई के रास्ते पर लाता है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये नाटक, जिसका शीर्षक है परिवर्तन।
6: अरे यार मगरू, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। अगर इसी तरह बैठे रहे तो घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो जाएगा।
7: हाँ यार, बोला ना, बात तो तुम्हारी सही है और तुम्हारी भाभी भी।

0: रोज लड़ती रहती है। अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि पहले जैसा धंधा नहीं रहा भाई चोरी में।
1: हाँ मगर यार वो भी क्या दिन थे, जब चोरी करने के लिए जाते थे तो आसानी से माल मिल जाता था।
0: बात तो सही है, अब लोग भी बहुत होशियार हो गए भाई, अपना रुपया पैसा सब बैंकों में रखते हैं और गहनों को तो उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉकर में।
1: अरे यार वो बैंकों में हॉकर नहीं लॉकर होता है, जिसमें लोग बाग अपना पैसा सोना चांदी रखते हैं।
0: अरे घरों में चोरी का धंधा बंद करवाकर बैंकों को लुटवाने का इरादा क्या भाई?
1: अरे यार मगरू बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो पैसों से काम, अब तू बता ऐसी घर में खाते रहे तो खाते खाते तो घर में बैठे बैठे महाराजों के खजाने खाली हो जाते हैं।
0: हाँ यार अब तो दोपहर है, शाम होने दे, खाना पीना खा पी कर आज शाम अपने पुराने धंधे पर ही चलेंगे, चोरी से मस्त धंधा है ही क्या है।
1: हाँ यार शहर में तो अब चौकीदार चौकसी करने लग गए, रात में गश्त लगाते रहते और ऊपर से पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं। अब तू बताया शहर में चोरी करना कहाँ आसान रह गया है, अगर पकड़े जाओ तो हवाला, नहीं तो हवाला से सीधे सीधे।
0: हाँ यार सही कह रहा है यार भोलानाथ, ये पेट है ना सब कुछ करा देता है, जान पर खेलने वाले काम भी, लेकिन मुझे तो चोरी से अच्छा कुछ काम लगता नहीं अगर पुलिस ना हो तो।
1: हाँ भाई आजकल तो गांव देहात की चोरी भी आसान कहाँ रह गई है, कुत्ते भी तो इतने तादाद में बढ़ गए, जिधर जाओ भौंवो करते रहते और पूरी बारात की बारात पीछे पड़ जाती है।
0: कुत्ते भी पुलिस हो गए भाई, आज शाम को 4 रोटी लेके चलना कुत्तों के आगे फेंकने के लिए।
1: हाँ भाई कम से कम कुत्तों का मुंह तो बंद रहेगा, नहीं तो भौंवो करने लगते और लोग समझ जाते हैं कि चोर आगे चोर आगे।
0: चल तो यार शाम हो गई है, अपने घर चले, खाना पीना खाया जाए फिर निकलेंगे, थोड़ा अंधेरा होने पर आराम से।
1: पिछली बार की तरह पी मत आना, नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा।
0: अरे यार पागल मत समझो मुझे।
1: ठीक है चल घर चलते खाते पीते हैं।
0: चलो चलें।
1: मगरू ओ मगरू बाहर तो आ।
0: हाँ भाई आजा आजा, दरवाजा खुला हुआ है, भीतर आजा।
2: देवर जी जा तो रहे हो अपने भाई के साथ चोरी करने, जरा मोटा माल हाथ मार के लेके आना।
1: हाँ भाभी जी बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम मोटा माल ही साथ लेके आएंगे, बस तुम भगवान से दुआ करो कि हम पकड़े नहीं जाएं।
0: आज कोई खास मोटा माल किसी अमीर आदमी के यहाँ से चुराना है भाई।
1: चलो ऐसा ही करेंगे बिल्कुल।
0: चलो तो चलो।
1: यार मगरू आज शहर में तो नहीं चल रहे भाई, तू बुरा मान या भला मान?
0: हाँ यार मैं क्यों बुरा मानूंगा, बहुत दिनों के बाद तो चोरी करने निकले, उसमें भी शहर जाकर पुलिस के या चौकीदारों के हाथ पकड़ना है क्या?
1: अरे यार मुझे तो पास में गांव दिख रहा है, उसी में चलते हैं।
0: चलो भाई चलो, बस कुत्तों से सावधान रहना, थोड़ी सी परछाई दिखते ही भौंभौं करने लग जाते हैं।
1: ये जो रोटी तू भांत कर लाया है ना कब काम आएगी, ये तो कुत्तों की रिश्वत है मुंह बंद करने के लिए, कुत्ता साले भौंभौं करते रहते हैं।
0: अरे भोलानाथ जरा बच के देखो, देखो कुत्ते आ गए, जल्दी रोटी फेंक।
1: अरे यार मगरू ये कुत्ते भी ना मेरी जान के पीछे पड़ गए, रुक फेंकता हूँ।
0: यार बहुत समय हो गया, किस घर में चोरी कर रहे हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
1: यार हम जहाँ छुपे हैं तो कोई ना कोई घर ही है, क्यों ना इसी दीवार को तोड़ के देखें, क्या पता मोटा माल मिल जाए, वैसे भी तुम्हारी पत्नी बोल रही थी मोटा माल लेके आना।
0: हाँ भाई चलो दीवार को तोड़ते हैं, सुन धीरे धीरे तोड़, कोई पता ना चल जाए किसी को।
1: यार सुन इतना ही तोड़ना इतना कि हम भीतर घुस जाएं।
0: यार तुम भीतर घुस जाओ, मैं बाहर रखवाली करता हूँ।
1: ठीक है भाई। अरे यार बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा जा रहा है। मगरू ओ मगरू सुन तो सही यार।
0: अरे क्या बात है धीरे बोल, कोई सुन लेगा, बता क्या बात है।
1: यार मगरू आज तो मजा आ गया, देख मुझे तो बनिए की दुकान सी लग रही है ये तो, इसमें छुआरे बादाम काजू और पैसे भी रखे, मुझे लगता है आप तो भाभी जी की दुआ सुन ली भगवान ने।
0: सच में शुक्र है ऊपर वाला तेरा, बड़े दिनों में मोटा माल हाथ लगा है। अरे भोलेनाथ सारा माल ले चल।
1: हाँ भाई हाँ भाई, मैंने सब मोटा मोटा माल ले लिया है, आज तो भाभी खुश हो जाएंगी क्योंकि बरसों का प्रबंध हो गया खाने के लिए।
0: चलो तो चलो चलते हैं। अरे यार माल बहुत ज्यादा है, कैसे लेकर चले इतना सब कुछ?
1: अरे यार मगुरु तेरा काम तो बन गया, अब मेरी तो चिंता कर ले।
0: अरे तू क्यों चिंता कर।

0: पता क्या बात है बता तो सही।
1: अरे यार क्या हमारे बच्चे रूखे सूखे बादाम छुआरे खाएंगे, दूध भी तो चाहिए इनके साथ।
0: अरे यार तू क्यों चिंता करता है, चल किसी के घर में जाके एक अच्छी दूध वाली भैंस को चुराते हैं ताकि तेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी।
1: हाँ भाई चल इसी गांव में देख लेते हैं, किसी ना किसी के घर तो भैंस मिल ही जाएगी।
0: अरे मिल गई मिल गई, यहाँ देख एक भैंस है, इधर आ इस दीवार को तोड़, इस घर में भैंस है।
1: अरे नहीं यहां से नहीं तोड़ते, पीछे चलते, मुझसे भागने में आसानी होगी, पकड़े जाएंगे तो।
0: अरे बोला ना तोड़ो इस दीवार को, कोई जग ना जाए, देखो ईंट पत्थरों को आराम से संभाल के रख।
1: अम्बे यार धीरे धीरे तोड़ रहा हूं, तू तसल्ली तो रख।

0: कहीं भूखे पेट चूहा कूद रहे हैं पेट में।
1: बेटा चिंता मत कर, और थोड़े दिन धीरज कर ले।
0: माँ, जब से पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से गए हैं, मैंने कभी बादाम छुआरे किशमिश नहीं खाए।
1: हाँ बेटा, तेरे पिताजी को गुजरे पूरे 10 साल हो गए, जब तू 2 साल का बच्चा था। वो ही तो इस घर को चलाने वाले थे, जिनके बिना तो हमारी दुनिया ही वीरान हो गई।
0: माँ माँ, पिताजी कितने अच्छे थे। वो मुझे रोज अपनी गोद में उठाकर उस बनिया की दुकान पर ले जाते थे और मुझे खाने के लिए मन पसंद चीज दिलाया करते थे।
1: हाँ बेटा, एक मैं हूँ कमबख्त जो अपने बेटे को कोई भी अच्छी चीज पेट भर कर नहीं खिला पाती।
0: माँ ऐसा मत कहो। माँ देखो, तुमने इतनी मेहनत मजदूरी से मेरे लिए ये भैंस खरीदी है। पूरे 3 साल से तुम साहूकार के घर काम कर रही हो और उन्हीं पैसों से तुमने ये भैंस खरीदी है मेरे लिए।
1: हाँ बेटा, जब ये बच्चा डालेगी तब दूध देगी, तो मैं तुमको पेट भर के दूध पिलाया करूंगी।
0: माँ मुझे मलाई खिलाया करोगी ना?
1: हाँ बेटा, और कौन है मेरा इस दुनिया में जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ।
0: माँ बहुत दिनों से मैंने घी दूध ना खाया, बताओ हमारी भैंस कब दूध देगी?
1: बेटा बस 2 महीने और सबर कर, फिर खूब पेट भर के दूध दही खाना, फिर तुमको बादाम छुआरे किशमिश सब खिलाया करूंगी।
0: माँ मुझसे तुम क्यों छुपाती हो, बताओ ना। माँ जब हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है तो तुम कैसे मुझे ये सब खिलाओगी? माँ
1: बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े, ऊपर वाला सब हमारा इंतजाम करेगा। कभी ना कभी हमारे घर में भी अच्छे दिन आएंगे, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर दुआ कर रहा होगा।
0: माँ सुना है भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
1: बेटा एक दिन हमारी गरीबी इसी भैंस के सहारे खत्म हो जाएगी। जब दूध देगी ना, तो हम दूध बेचा करेंगे और उससे मिलने वाले पैसों से तेरे लिए सब चीज खरीद खरीद के लाया करूंगी मेरे लाल।
0: माँ तुम कितनी अच्छी हो। माँ
2: यार मगरू, तुमने सुनी माँ बेटों की बातें?
3: यार भोलेनाथ, मेरे तो आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे भाई।
2: यार मगरू, मैंने इनके घर में घुसकर देख लिया है, मुझे तो कुछ नहीं पाया है। मुझे तो लगता है ये बहुत करीब हैं।
3: भोलेनाथ भाई, मेरा दिल तो अभी भी रो रहा है अंदर से। देख, हम इसकी भैंस चुरा कर पाप के भागी नहीं बनना चाहते भाई।
2: हाँ यार, मुझे भी रोना आ रहा है। इस विधवा और इसके बेटे के हक को चुरा कर मैं नहीं ले जाना चाहता भाई। आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा यार मगरू।
3: यार भोलानाथ, आज के बाद तो मैं भी कभी चोरी नहीं करूंगा। हमने कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं अब तक, ना जाने कितने ने बद्दुआ दिए हमको।
2: हाँ भाई, सच कह रहे हो यार, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और कभी हमारी पत्नियों ने भी नहीं कहा हमसे कि चोरी मत करो, ये गलत काम है।
3: इस विधवा और इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी है यार। देख भोलानाथ, जो उस बनिया की दुकान से हम चुरा कर लाए ना, उसको विधवा के घर में रख देंगे आज।
2: हाँ यार चलो, सब इसी घर में रख देते हैं, जब ये सुबह माँ बेटे देखेंगे तो।
3: यार भोलानाथ, जो हमने आज चुराया ना बनिए के घर से, रुपया पैसा बादाम छुआरे मसाले, सब इस विधवा के घर में रख देते हैं। ये बेचारी ये कभी खरीद भी नहीं पाएगी, और इसके घर में कुछ है भी नहीं।
2: हाँ दोस्त मगरू, आज इस विधवा के घर में ही मैं और तू शपथ खाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे यार।

0: अपना हाथ पकड़ा मुझे।
1: ले मगरू,
0: मैं मगरू,
1: मैं भोलानाथ, हे
0: हे
1: ईश्वर,
0: ईश्वर,
1: इस
0: इस
1: गरीब
0: गरीब
1: विधवा
0: विधवा
1: के
0: के
1: घर
0: घर
1: में
0: में
1: ही
0: ही
1: आज
0: आज
1: शपथ
0: शपथ
1: खाकर
0: खाकर
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं,
1: आज
0: आज
1: के
0: के
1: बाद
0: बाद
1: कभी
0: कभी
1: चोरी
0: चोरी
1: नहीं
0: नहीं
1: करेंगे,
0: करेंगे,
1: ना
0: ना
1: ही कभी
0: कभी चोर
1: चोर
0: कहलाएंगे,
1: कहलाएंगे, और
0: और
1: कमाकर
0: कमाकर ही
1: ही
0: सदा
1: सदा घर
0: घर
1: चलाएंगे।
0: चलाएंगे।
1: हे
0: हे
1: ईश्वर,
0: ईश्वर,
1: हमारी
0: हमारी
1: मदद
0: मदद
1: करना।
0: करना। तो देखा श्रोताओं, चोरी एक बहुत बड़ा पाप है जो लालच में आकर किया जाता है। आज के दौर में इस पाप से बहुत ही कम लोग बच पा रहे हैं और दूसरों की चीजों पर अपनी नियत डिगा रहे हैं, और इस पाप में गिरकर वो अपने जीवन को सोचते तो हैं कि सुकून से जिएंगे, लेकिन वो अच्छे रास्ते से और ईश्वर की भक्ति से कोसों दूर ले जाते हैं। कहीं हमारे और आपके जीवन में तो नहीं कोई लालच काम कर रहा जो हमें चोरी की ओर अग्रसित करे? जी हाँ, ऐसा अगर है तो आज वो समय है कि आप अपनी गलती से क्षमा पाएं, गलती को माने और स्वीकार करें और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाएं।
2: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001, और हमारा फोन नंबर है
3: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
2: तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय श्रोताओं 11:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार।

आप सुन रही थी शुभा मुद्गल को, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं गुलजार की रचना आशा भोसले की आवाज़ में।

0: आप सुन रही हैं समी कार्यक्रम सुर बहार।
1: मैंने भूपिंदा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो इसलिए

0: आपने सुना गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार। ये आखिरी गीत आप जो सुन रहे थे, आवाज थी भूपेन हजारिका की। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संजीवनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर श्रुति शर्मा, जो आयुष विभाग पंचकुला में कार्यरत हैं, आयुर्वेदाचार्य के तौर पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक जो हमने चुना है, वो चुना है हमारी गट हेल्थ।
2: जी सर।
1: और गट हेल्थ के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा प्रचार प्रसार होता है, तरह तरह के लोग तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये फॉलो करना चाहिए। ये जानना अति आवश्यक हो गया है कि गट हेल्थ क्या है और गट हेल्थ को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, इसके खराब होने के कारण क्या हैं। इन तमाम बातों के बारे में आज डॉक्टर श्रुति हमें जानकारी देंगे।
2: जी सर, धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले हमें गट हेल्थ के बारे में बताइए कि गट हेल्थ किसे कहते हैं और इसका हमारे शरीर में क्या काम है।
2: गट हेल्थ हमारी आंत का स्वास्थ्य है। हमारी आंत का स्वास्थ्य ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी आंत ही स्वस्थ नहीं होगी तो जो भी हम खाएंगे वो पचेगा ही नहीं और हमारी सारी दिनचर्या बाधित हो जाएगी।
1: यानी गट का मतलब हमारी आंत।
2: आंत
1: चाहे छोटी है
2: चाहे वो बड़ी है।
1: बड़ी है।
2: हाँ जी सर।
1: तो उसे कहते हैं हमारी गट।
2: गट
1: जी।
2: सर पहले तो हमें अपने शरीर का प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमारा खाना पचता कैसे है। सिर्फ इंटेस्टाइन का या गट का रोल उसमें नहीं होता।
1: अच्छा।
2: इट्स अ ब्यूटिफुली डिजाइंड मैकेनिज्म ऑफ गॉड कि ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इसको सेकंड ब्रेन भी बोला गया है। जैसे जो भी हम खाते हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाने की नली को पार करके स्टमक में आता है। उसके अंदर कुछ एंजाइम्स एसिड्स मिलते हैं जिससे उसकी पाचन क्रिया बढ़ती है और कुछ जूसेस निकलते हैं लीवर से गॉल ब्लैडर से जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट्स उनके डिसॉल्व। उसके बाद खाना छोटी आंत में आता है और छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में जाता है।
1: वो जो कहते हैं कि जठराग्नि,
2: आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण मंद अग्नि को बताया गया है।
1: जी।
2: यदि हमारी जठराग्नि ही मंद है यानी गट हेल्थ अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू तो हमारा खाना पचता नहीं।

0: है, सड़ता है,
1: मतलब वो पचने के प्रोसेस में आता ही नहीं है,
0: पचने के प्रोसेस
1: वो
0: में
1: पड़ा रहता है,
0: वो पड़ा रहेगा
1: और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सड़ने लगता है,
0: बिल्कुल सड़ने लग जाता है।
1: अच्छा,
0: जठराग्नि मंद नहीं होनी चाहिए, बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए, वो अपनी बैलेंस उसमें होनी चाहिए। और यदि मॉडर्न से रिलेटेड करें, रिलेशन इसको बिठाएं, तो वो होती है जो हमारा एसिड रिलीज होता है खाना पचाने के लिए, जो हमारे एंजाइम्स पेप्सिन वगैरह स्टमक रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, वो सब आते हैं। अग्नि और एलोपैथ में जो एसिड्स वगैरह रिलीज एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो दे आर इक्वल। तो मंद अग्नि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा।
1: जी, तो अब ये बताइए कि एक आम व्यक्ति को ये कैसे पता चले कि उसकी जो जठराग्नि है वो मंद है, तीव्र है, मध्यम है, और उसका खाना पच रहा है कि सड़ रहा है, वो कौन सी स्थितियां हैं?
0: सर बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी जठराग्नि कैसी है। हम कुछ भी खा लें, कुछ भी खाएं, चाहे वो अनहेल्दी भी है, वो पच जाए, वो गैस ना बनाए, वो एसिडिटी ना बनाए, एसिड वापस गले में रिफ्लक्स ना हो, पेट में भारीपन ना लगे, हमारी स्टूल जो है वो प्रॉपर
1: रहे,
0: वो ये टेस्ट है हमारा खुद का स्टूल, पूप का जो टेस्ट है वो इंडिकेट करता है हमारी गट हेल्थ को।
1: यानी आपके शरीर का जो सफर है वो बिना बाधा के अगर पूरा काम करता है
0: जी,
1: तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं।
0: लास्ट यदि पॉइंट तक है तो वो हाँ, हमें खुद इतना आइडिया हो जाता है कि हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। सर ये ब्यूटीफुली डिजाइंड मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो भी हम खाते हैं
1: जी,
0: अनहेल्दी भी खा रहे हैं यदि हम बाय चांस, तो हमारे गट्स के इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन है लार्ज और स्मॉल, इस तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं जो अंदर की लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, बहुत पतली, बाल से भी पतली, पानी से भी पतली लाइनिंग है, बहुत महीन। और सर दैट जो लेयर है वो इतनी सेंसिटिव है कि जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो बैक्टीरिया हेल्दी है, उसको अलाउ ही नहीं करती कि आप अंदर आओ, ब्लड फ्लो में मैच करो।
1: अच्छा।
0: हम फ्रेंड्स बनाने में हो जाता है कि नहीं चूज कर पाते कौन गुड फ्रेंड बनेगा, कौन हमारा बैड फ्रेंड है, बट
1: लेकिन वो
0: कभी कंफ्यूज नहीं होती है, कभी भी, नेवर। सर आजकल एक वर्ड आया है कि लीकिंग गट,
1: जी
0: वो हम ही करते हैं, अनहेल्दी इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी को हम ही वहां पे नुकसान पहुंचा देते हैं। तो
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये जो आपने कहा ना जब हम खाते हैं तो एक बार उसे फिर से दोहराइए, खाने के बाद सबसे पहले जो हमारा खाना है वो कहां पहुंचता है?
0: सबसे पहले खाना स्टमक में जाएगा सर, फूड पाइप को
1: जठराग्नि में
0: करके, हाँ जी, जहां जठराग्नि, जहां पे हीटर चल रहा है,
1: सबसे पहले वहां जाएगा,
0: वेट कर रहा है कि फूड आएगा, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग एसिड रिलीज होता है सर। वो हम ये नहीं कि जिस मर्जी टाइम हम खा रहे हैं ना तो वो वेस्ट है, वो सड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो एसिड है ही नहीं, स्टमक में जठराग्नि है ही नहीं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है सर। एक्चुअली ये सन के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे सन सुबह सुबह राइज होता है, जैसे जैसे सन की वो बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि बढ़ती है,
1: तीव्र होती है।
0: और वो जैसे सनसेट हो जाता है तो हमारी जठराग्नि भी मंद हो जाती है।
1: और जठराग्नि के बाद
0: वो खाना सड़ गया है या पचा है वो डिपेंड आपके खाने पर, आपके एसिड पर पड़ता है।
1: नहीं, अगर खाना पच गया है
0: जी,
1: उसके बाद
0: सर वो छोटी आंत में आएगा।
1: अच्छा, पहले छोटी आंत,
0: हाँ जी, छोटी आंत में आएगा, कुछ जैसे प्रोटीन्स वगैरह कुछ का ब्रेक डाउन होगा वहां पे, पर मेन प्रोसेस चलेगा एब्जॉर्प्शन का, मिनरल्स या जो भी आपने लिया वो एब्जॉर्ब करेगी इंटेस्टाइन।
1: तो गट हेल्थ का प्रोसेस कहां से शुरू होता है?
0: सर गट हेल्थ का प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है
1: जी,
0: जब हम खाना चबाते हैं 32 बार चबाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है, उसको इतना महीन, जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, इतना रस बना दीजिए, इतना सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाना
1: उसको
0: चाहिए,
1: काम में करना पड़े।
0: उसको टाइलीन एंजाइम्स इतने रिलीज हो जाएं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड यहां से स्टार्ट हो जाए। गट को सिर्फ अपना काम करना पड़े, एब्जॉर्प्शन वाला अलाउ करना है किसको, बैक्टीरिया वाला काम वहां पे करना पड़े, जो एंजाइम्स वाला काम है वो हमारे माउथ और स्टमक में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
1: वैसे डॉक्टर श्रुति, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में 32 बार चबाने का समय,
0: सर देखिए वो एक
1: 32 बार चबाने का मतलब क्या है?
0: हाँ जी, 32 बार वो मैंने आपको पहले साथ के साथ क्लियर किया सर, कि फॉर्म इतनी रसीला हो जाना चाहिए, लिक्विड जैसा हो जाना चाहिए कि वो, सर देखिए टाइम सर बहुत सारी चीजों के लिए है, रील्स स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, बेशक हमारी भागदौड़ की जिंदगी है,
1: हाँ, हम 10-15 मिनट
0: सर, हम उसको 5 मिनट सर उसको एक भगवान का प्रसाद मान

0: की कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए अपने मन में, वही मैं आपको आगे बताऊंगी।
1: और उसी के लिए तो काम कर रहे हैं,
0: उसी के लिए काम बेसिकली वी आर डूइंग। तो सर देखिए 32 बार एग्जैक्टली नोट कि मैं ये मेरे कहने का मतलब, उसे अच्छे तरीके से चबा के खाइए, जो प्रोसेस जहां पे होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए,
1: यानी वो तरल बन जाए,
0: बिल्कुल रस बन जाए।
1: इतना रस बन जाए कि अंदर आपके सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने की दिक्कत ना आए।
0: हाँ जी, दिक्कत ना आए उसको, इतना ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन सर ऐसा है ना कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के लिए अलग अलग एंजाइम्स होती हैं जो इनको ब्रेकडाउन करते हैं। तो कुछ एंजाइम हमारे स्लाइवा में है, जैसे टाइलिन, वो आगे नहीं है वो एंजाइम, वो यहीं पे तोड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को। यदि आपने टाइलिन का यूज ही नहीं किया, स्लाइवा का यूज ही नहीं किया, तो वो एज इट इज पास ऑन हो जाएगा।
1: ये सर, सब इंटरलिंक्ड है
0: सब। सर ये आपस में इंटरलिंक होने के साथ साथ हमारे ब्रेन से लिंक, सारे लिंक इसका ब्रेन से,
1: जी जी जी।
0: ब्रेन से ही वेगस नर्व आती है।
1: जी जी, हम ब्रेन पर पहुंचेंगे बाद में।
0: हाँ जी,
1: लेकिन अब हम यहाँ से शुरू करेंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: और शुरुआत हम कर चुके हैं, आपने बताया कि गट हेल्थ क्या है और ये कहाँ से शुरू हो जाती है,
0: बिल्कुल,
1: इसका काम किस तरह से। अब ये बताइए कि गट हेल्थ जो है हमारी, आंत, बड़ी आंत या छोटी आंत, इसके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव कब पड़ता है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि अब ये खराब हो रही है भाई।
0: पहले मैं रीजंस बताती हूँ, ये खराब होती क्यों,
1: होती क्यों, ये बताइए
0: सर। इसका खराब होने का पहला तो हमारा अनहेल्दी फूड स्टाइल, जो भी हमें मिल रहा है, जिस भी टाइम मिल रहा है हम उसी टाइम खा रहे हैं। सर आयुर्वेद में इसके लिए बहुत डीप स्टडीज हुई हैं, इतने हजारों साल पहले, और बहुत बहुत कुछ लिखा गया है आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है। देखिए पहले तो खाना कितना है, हमें 1/3 अपनी भूख को या स्टमक को अपने माइंड में इतना रेश, क्योंकि हम उसको 1/3 खाएं और 1 हम डाइजेशन के लिए खाली रखें। सर हम जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर में अपने जूसेस या चटनी बनाते हैं, सर ऊपर तक भर दें हम पुदीना, धनिया, ग्राइंड ही नहीं होगा प्रॉपरली, रुकेगा बार बार, अलार्म करेगा, फिर जबरदस्ती करेंगे तो सर वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए है कि उसके एक तो स्पेस रखें, पानी के लिए भी स्पेस रखें, 1/3 आपने फूड लिया, उसके बाद आपने उसके लिए पानी के लिए 1/4 भाग आप उसका खाली रखें कि वो मिक्स हो के ग्राइंड कर सके, स्टमक की कैपेसिटी होती है सर 1/2 किलो, आप उसके अकॉर्डिंग उसको। सर बहुत कैपेसिटी है ह्यूमन स्टमक की, ऐसी बात नहीं है, यदि आप ओवर ईट,
1: हाँ, कैपेसिटी बहुत है
0: सर, ओवर ईट भी कर लेंगे तब भी वो अपना काम बहुत बखूबी निभाता है, लेकिन सर एक उम्र का कई फैक्टर्स होते हैं, फिर वो जब आपको अलार्म करता है कि नाउ आई एम नॉट कैपेबल,
1: जितनी भी भूख है उस भूख से थोड़ा कम खाइए
0: ताकि वो पचे।
1: तो कितनी बार खाइए
0: सर? देखिए आयुर्वेद में 2 कहा गया है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लेकिन बहुत पुरानी वो ग्रंथ है, तो मतलब थोड़ा आज की, सर इसमें 3 खाना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल हम बताते हैं सभी पेशेंट्स को या ओपीडी अपने लेवल पे। सर देखिए ब्रेकफास्ट में पहले तो ये कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट एक राजाओं की तरह करना चाहिए, बहुत अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन सर वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए जब सूर्य अपनी पूरी उस पर हो
1: जी,
0: ताकि अच्छे से जूसेस निकलें और अच्छे से वो खाना पच जाए।
1: मतलब सुबह 8 के बाद कि 9 के बाद?
0: सर सुबह 8 का टाइम आइडियल टाइम होता है सर, उसमें हम बहुत हैवी ना खा के हम पहले वो चीजें खाएं जो हमारी आंत को, अंदर वाली चीज को तैयार करें कि कुछ आएगा कुछ देर बाद,
1: बी रेडी।
0: हाँ बी रेडी। तो उसमें थोड़ा लाइट फूड सर हम जैसे उसमें अला, और सर इसमें अभी जो नए वर्ड्स चले हुए हैं प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक,
1: जी ये बिल्कुल चलन में,
0: बहुत ज्यादा चलन में है सर। प्रोबायोटिक्स तो हम बॉटल्स लेके पीते हैं सर, ये लेने की कोई नीड नहीं होती है। प्रोबायोटिक होता किस किस में है? प्रोबायोटिक सर सबसे ज्यादा होते हैं हमारे दही में
1: जी,
0: लस्सी में, कांजी में, अचार में सर, इसमें बहुत अच्छा। सर होता क्या है प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल फॉर हेल्दी गट, हेल्दी डाइजेशन, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं उनको
1: जी।
0: वो हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं,
1: उनको एक्टिवेट करना,
0: उनको एक्टिवेट करना है या हमें उनको एड ऑन उनकी बढ़ानी है, तो हमें दही, छाछ, लस्सी, कांजी सर, इडली, ढोकला, फर्मेंटेशन जिसमें हो गई है, जिस भी फूड में फर्मेंटेशन होगी, गुड फर्मेंटेशन, हेल्दी बैक्टीरिया जिसमें बनने शुरू हो गए हैं, वो प्रोबायोटिक। इडली फर्मेंट करके बनता है सर, ढोकला फर्मेंट करके बनता है, दही भी फर्मेंट।

0: होती है, तो वो सारी कांजी जो स्पेशली अब हमारा सीजन चलेगा, गाजर की चुकंदर की कांजी हम अपने
1: जी
0: नॉर्थ इंडिया में चलेगी सर, वो सब प्रोबायोटिक है। अब सेकंड वर्ड आता है प्रीबायोटिक।
1: जी
0: प्रीबायोटिक जो हमारे एंजाइम है उनको जो खाना चाहिए, एंजाइम तो दे दिया कांजी का आपने, पर उसको खाने के लिए ग्रो करने के लिए भी कुछ चाहिए सर, वो होते हैं माइलेट्स में। अब आप बहुत प्रचलन है माइलेट खाइए, बाजरा साबुत अनाज जिसको हम
1: जी जी
0: कहते
1: जी
0: हैं, माइलेट्स का बहुत प्रचलन आया। गवर्नमेंट ऑफ अपनी इंडिया ने भी बहुत चलाया कि माइलेट्स खाइए, माइलेट्स खाइए,
1: जी जी
0: साबुत अनाज सर वो है प्रोबायोटिक का
1: मिलेट्स
0: खाना।
1: कहने वाले
0: हाँ मिलेट्स
1: मिलेट्स
0: का, तो वो है प्रोबायोटिक का खाना
1: मतलब
0: प्रीबायोटिक।
1: जैसे बाजरा है, रागी
0: बाजरा
1: है,
0: है,
1: ज्वार
0: रागी है
1: है।
0: सर, ऑनियन है, गार्लिक है, बहुत सारी चीजें हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: कि उसको कच्चा बनाना है सर,
1: कच्चा
0: कच्चा,
1: बनाना है।
0: हाँ कच्चा केला है सर, बहुत सब्जियां हमारी दादियां और वो बनाते होते थे कच्चे केले की सब्जी, तो ये सब होते हैं सर प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों ये बैक्टीरिया, मतलब प्रोबायोटिक तो बैक्टीरियाज हो गए, प्रीबायोटिक उनका फूड हो गया।
1: यानी हमारे खाने में जो चीजें आपने बताई हैं ये शामिल होनी चाहिए।
0: हाँ जी सर, तो हमें मॉर्निंग में हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ब्रेकफास्ट में प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए सर, इडली है, ढोकला है, दही है, लस्सी है, सिट्रस फ्रूट हैं, फ्रूट्स हैं, मौसमी ब्रेकफास्ट में
1: जी
0: सर। उससे क्या होता है, एक तो शुगर क्रेविंग नहीं होती है आपको, मौसमी से अंदर क्रेविंग खत्म हो जाती है शुगर के लिए, दूसरा फाइबर चला जाता है बहुत सारा, बहुत अच्छी मात्रा में, जो कि बैक्टीरियाज को अंदर स्टिमुलेट करता है
1: जी
0: डाइजेशन के लिए सर। उसके बाद आता है लंच, लंच बहुत अच्छे से रज के खाइए वो, लेकिन कुछ एक पार्ट छोड़ के स्टमक का, थोड़ा
1: जितनी
0: कम,
1: भूख है उससे
0: उससे
1: कुछ
0: कम
1: कम।
0: कम।
1: जी
0: तो उसके बाद लंच में लीजिए सर रोटी, दाल, चावल, जो भी आप, छाछ, दही, जो भी आप खाना चाहें, विद सम रफेज सैलेड, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, जूस सर। उसके बाद डिनर आप इफ पॉसिबल सनसेट से पहले खा लीजिए।
1: बस मैं यही आपसे पूछने वाला था
0: जी सर,
1: कि जो डिनर का समय
0: जी
1: है,
0: सर,
1: रात्रि भोज जो है हमारा, भोजन जो है, उसका समय
0: सर
1: सूर्य ढलने से पहले होना
0: पहले
1: चाहिए।
0: हो, सनसेट के बाद नहीं खाना है सर। जैसे हैबिट्स हम बनाते हैं वैसे हैबिट्स बन जाती हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, वो खाना अच्छे से पचेगा इंटेस्टाइन में, उसको टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन होने के, सुबह आप फ्रेश टाइम से हो जाएंगे।
1: तो अगर हम ये चीजें फॉलो करते हैं, जिन्हें फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है,
0: नहीं
1: सिर्फ
0: सर,
1: आदत
0: हाँ ये
1: बनाने
0: सर,
1: की
0: हाँ
1: बात है,
0: हैबिट्स
1: हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारी गट जो है वो
0: हेल्दी,
1: हेल्दी रहेगी।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल
1: जी
0: हेल्दी रहेंगे।
1: तो गट हेल्थ खराब होने के कारण क्या है?
0: कारण सर, हमने टाइम से नहीं खाया,
1: जी
0: जल्दी जल्दी खाया,
1: जी
0: चबा कर नहीं खाया, अनहेल्दी खूब लिया, रिफाइंड ऑयल से बना हुआ खाना लिया सर,
1: जी
0: एमल्सी फायर फूड लिया सर। एमल्सी फायर दो फूड्स को मिला के बनाते हैं, जिसका बढ़िया एग्जाम्पल है आइसक्रीम,
1: जी
0: वो कभी नहीं डाइजेस्ट होता सर।
1: सबकी फेवरेट बन जाती है
0: हाँ,
1: वो
0: और एक
1: तो।
0: सर सैलेड ड्रेसिंग बड़ी चली हुई है आजकल,
1: जी
0: सॉसेज उसमें होते हैं सर, वो एमएलसी फायर फूड है, वो दो फूड्स को मिला के बना हुआ है, और तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता सर, और हमारे डाइजेशन में बाधा डालता है,
1: ओके ओके ओके।
0: वो तो
1: अच्छा,
0: आपके ऊपर।
1: यहाँ बात हुई रिफाइंड के बारे में, रिफाइंड चीजें या रिफाइंड ऑयल,
0: बिल्कुल।
1: तो हमें अपनी कुकिंग में कौन सा तेल
0: सर
1: इस्तेमाल
0: रॉ
1: करना
0: फूड,
1: चाहिए?
0: रॉ जैसे सरसों का मस्टर्ड ऑयल
1: जी
0: कच्चा, उसको यूज कीजिए सर, उसको पकाइए,
1: उसकी ड्रेसिंग कर लीजिए।
0: ड्रेसिंग भी कर सकते हैं सर,
1: जी
0: कोई
1: जी
0: जरूरी नहीं है
1: बहुत टेस्टी
0: उसका।
1: लगती है।
0: हाँ, अब आपकी
1: हाँ
0: फूड हैबिट्स है सर, साउथ में पूरा ही फूड उसमें बनता है, यूपी
1: जी
0: में चली जाइए, अपने यहाँ पे जो सर्दियों में लड्डू बनते हैं वो घी में बनते हैं, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में घी का बड़ा वो है, देसी
1: जी
0: घी का
1: जी जी
0: घर में
1: जी
0: बनाते हैं, प्योर होता है सर, लेकिन आप यूपी में चले जाइए, वहां पे मस्टर्ड ऑयल के लड्डू बनते हैं।
1: आप हरियाणा को बिलोंग करती हैं?
0: जी सर, मैं
1: कहाँ
0: हरियाणा से
1: से?
0: बिलोंग, मैं जींद से बिलोंग
1: जींद
0: करती
1: से
0: हूँ सर।
1: बिलोंग
0: हाँ जी
1: करती हैं।
0: सर,
1: तो हरियाणा में तो बाजरा बहुत शौक से खाया
0: सर
1: जाता है।
0: बिल्कुल, बाजरा सबसे, मैंने आपको बताया प्रीबायोटिक है, जो हमारे एंजाइम्स हैं प्रोबायोटिक, उनका बहुत अच्छा फूड है ये
1: जी,
0: बाजरा।
1: पर कुछ लोग कहते हैं कि बाजरा की रोटी खाने से उनके गैस बनती, भारीपन आता है,
0: नहीं सर
1: क्या ये
0: ऐसा
1: बात
0: कुछ
1: सही
0: नहीं
1: है कि
0: सर,
1: गलत
0: ये
1: है?
0: पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये
1: अच्छा,
0: बिल्कुल सेंसिटिव आपकी बॉडी हो सकती है, किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव हो सकती है
1: हाँ तो
0: सर,
1: उसे
0: गेहूं
1: मत खाइए।
0: सर, सर वीट एलर्जी भी होती है लोगों को,
1: हाँ
0: तब ये
1: जी
0: तो ना
1: जी
0: हम सब अपनी अपनी वीट छोड़ देंगे सर, वो बाजरा ब्लोटिंग नहीं करता, जो आपने और चीजें खाई है ना ब्लोटिंग वो करती हैं,
1: वो कर दिए।
0: वो बाजरा नहीं कर रहा है, आप उसको
1: तो
0: उचित मात्रा में लीजिए, बिल्कुल यूज
1: आजकल जैसे
0: करें।
1: मौसम है सर्दियों का,
0: बिल्कुल सर, बाजरा, मक्का, साबुत अनाज बताया है इसलिए सर, जो हमारी सर्दियों में क्यों खाते हैं बाजरा, क्योंकि हमारी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त

0: लगती है
1: जी
0: सर्दियों में,
1: बहुत भूख लगती
0: है, बहुत भूख लगती है हमें हैवी चीजें, सर लड्डू, गोंद के लड्डू या कुछ भी क्यों बनाते हैं सर्दियों में, इसलिए वो जठराग्नि को शांत करें, मीठा खाने का बहुत मन करता है जठराग्नि। सर बाहर की ठंड से आयुर्वेद में लिखा गया है कि बाहर की शीतलता को देखते हुए हमारी जो बाहर की यहाँ की गर्मी है वो प्रताड़ित होकर यानी हिलकर अपने स्थान को छोड़कर अंदर चली जाती है, जठराग्नि में चली जाती है, वो प्रदीप्त हो जाती है।
1: गहराई से अध्ययन
0: सर, आयुर्वेद बहुत गहरा अध्ययन है सर, हम कुछ ही पढ़ पाए, कुछ ही समझ पाए। सर मैं तो ये मानती हूँ कि आजकल के हमारा बैड लक मानिए कि हम उसको प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना पढ़ पा रहे हैं सर चलो उतना ही बेहतर है।
1: बहुत अच्छे से आप बता रही हैं और आपका भी मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत गहरा अध्ययन है।
0: नहीं सर ये तो
1: क्योंकि आप खुद आयुर्वेदाचार्य तो
0: हैं
1: ही,
0: हाँ जी सर,
1: आप आज गट हेल्थ के बारे में बता रही हैं और मैं भी इत्मीनान से आपकी बातें सुन रहा हूँ।
0: हाँ जी सर।
1: अब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं यानी बातचीत को आगे बढ़ाएं, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना शामिल करते हैं, एक संगीतमय अंतराल लेते हैं।
0: हाँ जी सर बिल्कुल, गाना बहुत अच्छा लगता है, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम।
1: जी जी
0: हाँ जी सर।

0: एक बार फिर से प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आए दिन सुनने को बहुत कुछ मिलता है कि आप रात को बने हुए चावल जो है उनमें दही डालिए, दही डाल के उसके या छाछ डाल के छोड़ दीजिए,
1: हाँ
0: उसके बाद सुबह उसे हल्का सा तड़का लगा के खाएं।
1: जी सर, जी
0: तो
1: सर,
0: क्या ये सही है?
1: सर बिल्कुल सही है, ओवरनाइट कुक्ड राइस बोलते हैं उसको, दही में मिला के सुबह खाने के लिए बताया गया। सर वही प्रोबायोटिक है, दही प्रोबायोटिक है, और जो ओवर नाइट जो कुक्ड राइस है वो प्रीबायोटिक है, वो उनका खाना है एंजाइम्स का, अच्छे एंजाइम का।
0: और कितने आसानी से मिल गया,
1: दोनों ही कॉम्बिनेशन है, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेकफास्ट की शुरुआत ही आपने प्रोबायोटिक से करनी है।
0: और ये भी सुनने को मिलता है कि अगर आपका B12 आपको कम लग रहा है।
1: सर बिल्कुल, हाँ। वो तो हम मॉडर्नाइजेशन उसको B12 मान लीजिए, जिंक मान लीजिए, आयरन मान लीजिए, कैल्शियम मान लीजिए, कुछ मान लीजिए सर।
0: और ऐसे कुछ और कुछ नुस्खे बताइए।
1: सर बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी सर, जैसे मैंने आपको कांजी बताया था, कांजी बनती कैसी है बहुत सारे लोगों को पता है, चुकंदर, गाजर, आंवला, अदरक, हल्दी, इन सबको मिक्स करके राई हम डाल देते हैं उसके अंदर। सर उसमें सब कुछ आ जाता है, गाजर से आ गया है विटामिन ए, चुकंदर से आ गया है आयरन, गार्लिक से आ गए हैं आपके एंटी ये कफ वगैरह सब उससे निकल जाएंगे, हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी आ गई है, राई वगैरह में सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक्स आ गए। तो सर ये कांजी वाला मिक्सचर बहुत अच्छा है।
0: इन्हें बनाना कैसे?
1: सर ये इन सबको डाल के गुनगुने पानी में डाल के ग्लास के जार में रख दीजिए, 3 दिन लगते हैं उसको फर्मेंटेशन होने में, धूप में रख दीजिएगा, बिल्कुल रेडी है सर।
0: 3 दिन के बाद
1: नमक, हाँ नमक डाल उसमें, नमक और राई मसाले और हींग, मसाले सिर्फ 3 ही जाएंगे सर, वेरी इजी टू प्रिपेयर और बहुत आराम से ले जाते हैं।
0: अच्छा एक चीज और बताइए डॉक्टर श्रुति, ये कहा जाता है कांजी के लिए साल में कुछ दिन या कुछ महीने निर्धारित होते हैं, उन महीनों में या उन दिनों में कांजी का सेवन उत्तम रहता है,
1: सर
0: ये बात कितनी सही है कि नहीं है?
1: सर देखिए इसमें प्रोबायोटिक है, ये कभी भी ले सकते हैं, लेकिन कांजी बनाने के लिए चुकंदर और गाजर चाहिए जो कि दोनों ही सर्दियों में आएंगे, इसलिए कांजी का सेवन सर्दियों में धूप में बैठ के बताया गया है। और मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत अग्नि प्रदीप्त होती है सर्दी के मौसम में, उसको बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए।

0: तो उस टाइम तो कांजी बहुत आवश्यकता है खाना पचाने
1: तो
0: के लिए।
1: आपने कांजी बनाने का तरीका बताया
0: जी सर,
1: प्रोबायोटिक का
0: हाँ
1: तरीका
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल प्रोबायोटिक
1: है। आपने साथ में ये बताया कि धूप में बैठकर इसका सेवन करना।
0: हाँ जी बिल्कुल, धूप में बैठकर सर
1: जी। ये कहा जाता है कि ब्रेन और गट हेल्थ का आपस में गहरा संबंध है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए।
0: सर बहुत ज्यादा संबंध है। स्ट्रेस यदि किसी भी व्यक्ति को है तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारी वेगस नर्व जो कि स्टमक से कनेक्टेड गट से कनेक्ट है वो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट हमारे गट पे डालते हैं। सर एक नॉर्मल सी बात लेते हैं कि किसी ने बहुत डरावनी कोई बात सुन ली या कोई शॉकिंग न्यूज सुन ली, उसे फ्रेश होने के लिए या वॉशरूम जाना पड़ता है। आपने सुना भी होगा सर, बहुत सुना होगा, नहीं मेरे पेट में मरोड़ उठ गए हैं, मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एकदम ये खबर सुन ली है। तो सर वही डायरेक्ट वो स्टिमुलेट करता है ब्रेन वेगस नर्व के थ्रू गट्स को, स्टिमुलेशन के बाद वो स्टूल पास होगा ही होगा,
1: वो तो टेंशन एकदम से वहां असर कर रही
0: है। बिल्कुल सर, स्ट्रेस हार्मोन यदि कोर्टिसोल जितना ज्यादा रिलीज होगा वो जो गट हेल्थ में हेल्दी बैक्टीरिया है उनको डायरेक्ट ही किल कर देता है। तो डायरेक्ट किल होने से खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं हो पाती है। सर ब्रेन ही गट को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन ही हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सर जैसे पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने में ब्रेन का ही रोल है, वेगस नर्व का, वो पहले ही बताता है कि अब खाना आने वाला है क्योंकि हम सोचते हैं हम खाना खाएंगे, वो पहले ही उनको बता देता है अंदर नर्व के तरह अब ये बंदा खाना खाएगा, तैयारी कर लो।
1: इंडिकेशन
0: वहां से मिलती है। आप सोचिए कि गोलगप्पे सामने रखे हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आ गया है, तो वो ब्रेन ने मैसेज दे दिया है कि गोलगप्पे खाएगी ये अभी, तो वो मुंह ने उसके अकॉर्डिंग टाइलिन रिलीज, सलाइवा रिलीज शुरू कर दिया। ये तो हमें दिख रहा है, अंदर जो जो शुरू हो चुका है वो हमें नहीं दिख रहा, गट रेडी हो जाती है उसके एक इंडिकेशन पे। तो वो यदि वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वो इंडिकेट ही नहीं कर रहा है अच्छे से गट को, कैसे गट डाइजेस्ट करेगी। सर जब गट ने डाइजेस्ट कर दिया है तब भी ब्रेन अंदर से रोक के रखता है कि अभी अभी नहीं खोलूंगा मैं स्टूल पास करने के लिए, एक बाहर वाली ओपनिंग है जो कि हमारे कंट्रोल में है, मैं मीटिंग में हूं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पर एक जो इंटरनल जो क्लोजर है, दो क्लोजर है, इंटरनल एक्सटर्नल, जो इंटरनल क्लोजर है वो ब्रेन के हाथ में, वो खोलता ही नहीं है जब तक गट पूरा नहीं पचा देती, अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर लेती, यूजफुल चीजें ले नहीं लेती।
1: खाना पीना आपने बताया कि हमें हेल्दी जो खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए उसके बारे में भी आपने बताया।
0: आंवला उसमें सबसे बेहतर है सर, विटामिन सी होती है, फाइबर होता है। हल्दी का रोल सर सबसे अच्छा है, वो एंटी इन्फ्लामेशन करती है और हमारी आंत के अंदर की कोई स्वेलिंग या इन्फेक्शन है उसको कम करती है। सर ये जो हमारी किचन में जो भी मसाले हैं ये हमारे इंडियंस, हम ब्लेस्ड हैं कि वो मसाले हम यूज करते हैं, पहले से ही आयुर्वेद की वो मेडिसिन ही है सर एक तरीके से। आप बाहर की किसी भी फूड में देख लीजिए सर, इंडिया के बाहर किसी फूड में हल्दी नहीं डलती है, पिज्जा में, बर्गर में, जो भी बाहर का फूड है उसमें किसी में हल्दी नहीं डलती है, किसी में अजवाइन नहीं डलती है, किसी में जीरा नहीं डलता है। बहुत कम कंट्रीज है जहां पे ताजा आटा गुथ के ब्रेड बनती है,
1: वो केवल हमारे यहाँ,
0: वो हमारे यहाँ
1: जी। डॉक्टर श्रुति एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। आमतौर से जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरा पेट अभी साफ नहीं हुआ है तो मैं अभी खूब सारा पानी पीऊंगा, कुछ कहते हैं कि मैं चाय पीऊंगा या किसी और पदार्थ का सेवन करूंगा या मैं अखबार पढ़ूंगा तब जाके मेरा जो है पेट वो साफ होगा, तो इसके बारे में बताइए क्या ये बात सही है और ऐसा क्यों कहते हैं लोग।
0: नहीं सर, ये आपकी हैबिट्स पे, आपने हैबिट बनाई है, ब्रेन को इंडिकेट किया है आपने, आपने खुद को अंदर से वो किया कि मैं ये करूंगा तो होगी, आप छोड़ के देखिए बिल्कुल होगा लेकिन आपकी विल पावर उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। फॉल्स इंडिकेशन हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, कोई रोल नहीं है सर इन चीजों का। आजकल ये बड़ा फैशन है कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है सर ये, और पेट साफ रखो यार। सर साफ रखो बिल्कुल उचित है लेकिन अननेसेसरली लैक्सेटिव नहीं लेने चाहिए सर, वो हमारी मूवमेंट को, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को हिंडर करते हैं।
1: क्या अपनी रूटीन में त्रिफला या हल्दी या आंवला इनका इस्तेमाल अगर हमें करना है तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए।
0: सर स्वस्थ व्यक्ति के लिए त्रिफला की मात्रा 5 ग्राम यानी 1 चम्मच टीस्पून।
1: और कितने दिन तक लगातार खाना चाहिए।
0: सर आप लगातार मत लीजिए उसको, आप लीजिए 10-15-20 दिन लीजिए, उसको बीच में ड्रॉप कर दीजिए। आंवला नित्य सेवन है, आप आंवले का नित्य सेवन कर सकते हैं, हल्दी का

0: नित्य सेवन कर सकते हैं।
1: हल्दी कितनी हमें इस्तेमाल करनी
0: चाहिए? हल्दी सर एक इंच का टुकड़ा होता है, आजकल जो कच्ची हल्दी आई है उसको ही ठीक मानते हैं, तो उसको अदरक की तरह घिस के हम दूध में बॉईल कर सकते हैं सर, उसकी चाय बना सकते हैं। भाई नहीं मुझे
1: क्या सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए?
0: सर बिल्कुल, उसका कोई भी नुकसान नहीं है सर, गुनगुना ही हो वो।
1: मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: एक गिलास 250 ml।
1: खाली पेट?
0: हाँ जी 250 ml बहुत है सर। सर अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी,
1: ये मूल मंत्र है।
0: हाँ जी।
1: तो डॉक्टर श्रुति आप इस प्रोग्राम में आई, इस मामले में आपकी बहुत गहरी पकड़ हमें महसूस हुई, तो आप यहाँ पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के संजीवनी प्रोग्राम में मैं आई, मुझे बहुत ही सौभाग्य लगा और अच्छा लगा।
1: तो श्रोताओं आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ रही डॉक्टर श्रुति शर्मा। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी। आज का विषय था गट हेल्थ। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि

0: विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों का सिलसिला। ये कार्यक्रम हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं,

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। तो हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किस

हो जब तक लिखा

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: कोबी नैयर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो यूं ही चूलिया किसी ने,
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

0: के पचासी झटके हो तेरा
1: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला
0: कान में झुमका चाल

डाले इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग।

मस्ताने ओ जानी जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा।

कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा, प्यार को बसा दूँ मैं।

का पुर्दा पुर्दा लगे पचासी झटका हो तेरा। रंग है नशीला अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला अंग अंग है नशीला। हाय हाय

खुमार बरवंग पी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल के कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: तिथि पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रही थी कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रस्तुत किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर। इस समय एक पूछने वाला है। अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में 1:05 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे। शाम 6:10 पर भी प्रादेशिक हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। ये पंजाबी समाचार हम आपके लिए श्रोताओं जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। वहीं से दोपहर 2 बजे आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी।

आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले किया करते हैं आपके लिए हिंदी में समाचार। समय नोट कर लीजिए, दोपहर 2:15, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 और रात 11:00। फिर सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। मुंबई केंद्र से हम आपके लिए ये रिले करेंगे। वहीं से हर रोज दोपहर 3:00 आप सुना करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा कार्यक्रम होता है। आज इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको आज के मेहमान सिलसिले के तहत वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राड़ी के साथ मंदाकिनी जोशी की गई बातचीत। हमारे यहाँ से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे शाम 5:20 पर, और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा शाम 5:30 पर। श्रोताओं, कुछ पंजाबी गीत सुन सकते हैं आप आज शाम 6:30 पर। पंजाबी गीतों का ही कार्यक्रम सुरसांझ आप सुना करते हैं रात 10:32 पर।

अपने मुंबई केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे शाम 7 बजे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला। हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार सुन सकते हैं आप शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। आज रेडियो डायरी कार्यक्रम भी होगा। समय है

शाम 7:47। विविध भारती की मुंबई केंद्र से रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आज सुनेंगे श्रोताओं एक झलकी दीवा स्वप्न। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक वहीं से रात 8:15 पर सुन सकते हैं आप। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर होगा। आज के फनकार हैं श्रोताओं संगीतकार सी अर्जुन। मुंबई केंद्र से ही रात 10 बजे आप सुना करते हैं उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। तो श्रोताओं ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय 1:05 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे, इसके फौरन बाद 1:10 पर जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वीबीजी रामजी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। अम्बाला जिले के गांव धनेड़ा में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे निर्भय सिंह को आखिरकार आज अल सुबह लगभग 3:30 बजे बोरवेल से निकाल लिया गया, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोरवेल से निकालते ही उसे तुरंत अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ऋषिपाल ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने निर्वैर को बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पंजाब से भी एक टीम बुलाई गई, किंतु वह जिंदगी की जंग हार गया। निर्वैर के चाचा हरिंदर सिंह की माने तो बोरवेल को खुला रखना साफ तौर पर लापरवाही है और इस मामले में वह कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। जींद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल 2 मूक बधिर बच्चों को बेहतर उपचार के लिए 11,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे गए। उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. रमेश पांचाल ने अपने कार्यालय में गांव मालवी निवासी 4 वर्ष 5 माह की जागृति और गांव धनकड़ी निवासी 5 वर्ष 7 माह के शिवम कुमार एवं उनके परिजनों को उपचार संबंधी यह वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे। इन दोनों बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट के लिए प्रति बच्चा 5,95,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिससे अब इनका पीजीआई चंडीगढ़ में पूर्णतः निःशुल्क और सफल ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर पांचाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों में जींद जिले के बच्चों के इलाज पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें दिल में छेद से पीड़ित करीब 135 बच्चों का इलाज भी शामिल है। हरियाणा सरकार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को

हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों एवं किसानों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करने, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

0: तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी प्रकार यानी नो ड्यूज प्रमाण पत्र तथा मॉर्गेज के लिए NOC जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। निर्विवाद मृत्यु के मामले में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे फॉर्म जारी करने के लिए एक दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि जे फॉर्म जारी करने के लिए मंडी सुपरवाइजर अथवा सहायक सचिव तथा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव को नामित अधिकारी निर्धारित किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबर सुनो। अज देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन डॉक्टरों वालों उन्होंने समर्पण हमदर्दी और जनतक सेहत की रक्षा से सुधार लिए उन्होंने अनमोल योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर देश के डॉक्टरों को शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सख्त मेहनत हमदर्दी और वचनबद्धता भारत की सेहत संभाल प्रणाली की रीढ़ ने। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अंथक यत्नों ने अक्सर सब तो चुनौतीपूर्ण हालात में अणगिनत लोगों का भरोसा और शुक्रगुजारी हासिल की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस से सारे डॉक्टरों को शुभकामनावां दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चंगी सेहत को उत्साहित करन, इलाज करन ते बेहतर जीवन ढंग बारे वधेरे जागरूकता पैदा करन लई उन्हां दा समर्पण अते वचनबद्धता एक मजबूत ते सेहतमंद समाज लई राह पत्रा करती है। पंजाब के मुख चोण अधिकारी आनंदता मित्रा ने कल जलंधर विखे EVM और VVPAT मशीनों के वेयरहाउस का तिमाही निरीक्षण किया। मुख चोण अधिकारी ने चोण अधिकारियों से वख-वख राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी स्थानक जिला प्रबंधकी कॉम्पलैक्स स्थित जिला पद्धरी वेयरहाउस च सुरक्षा रख रखाव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वोटिंग मशीनों की सुरक्षा लिए लगाए CCTV कैमरिया, अग बुझाऊ उपकरण और होरना सुरक्षा प्रबंधों की भी जांच की। उन्होंने जिला चोण अफसर वरजीत वालिया जिले के समूह चोणकार रजिस्ट्रेशन अफसर कारद्या जिले चल रही वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR का भी जायजा लिया। श्रीमती मित्रा ने SIR तहत बूथ पद्धर अफसर वालों घर घर सर्वेखण की प्रक्रिया का जायजा लिया जो कि 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस तहत अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों भी संगरूर च SIR बारे अपने ते अपनी पत्नी दे गणना फार्म भरे गए। उन्होंने सूबे दे सारे वोटरां नूं अपने गणना फार्म जरूर भरन की अपील की ताकि असली वोट जरूर बने अते फर्जी वोटां ना बनन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर जिले के धूरी विखे मुख्यमंत्री मावां तियां सत्कार योजना की शुरुआत की थी। इस मौके एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिया मुख्यमंत्री ने कहा
2: अज प्रोसैस शुरू हो गया बैंकां च, अज तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। 40 लाख तो वध रजिस्ट्रेशन कल तक हो गई सी। किसी ने फीस भरनी है, किसी ने कोई पढ़ाई दे काम ते खर्चना है, किसी ने कबीलदारी दे कम्मां दा, कोई उधार लाउणा है किसी दा। अज तो तुहाडा सन्मान राशि आनी शुरू हो जाऊगी, तुहाडे अपने पैसे होणगे, अपना सन्मान राशि। इसे करके असीं दा नां मावां तियां सत्कार योजना रखिया है कि तुहाडा सन्मान सत्कार है। ये
1: पंजाब च तटली हेठले पानी दे तेजी नाल घट रहे पद्धर नूं बचाउण ते सिंचाई दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 34 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत नाल कल्याण रजवाहे की कंक्रीट लाइनिंग दे प्रोजैक्ट की शुरुआत की। कल बरनाला विखे इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने दस्सिआ कि इस प्रोजैक्ट तहत अक्तूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने दस्सिआ कि इस अहम प्रोजैक्ट तहत 60.66 किलोमीटर लंबे इस जलमार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा जिस नाल इस दी नहरी पानी ले जाण दी समर्थ 10% तक वध जाएगी। बठिंडा डब वाली कौमी शाहरा के पिंड गुरुसर सैने वाला नेड़े अज सवेरे एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई जबकि 7 होर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। साढ़े पत्रकार ने दसिया कि हादसा उस वेले वापरिया जदों राजस्थान के बाड़मेर जिले तो श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा एक वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक नाल जा टकराया जिस दौरान हादसे च 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बचा कर्मचारियों ने काफी मशक्कत तो बाद वाहन च फसे लोगों को बाहर कढ़िया। मृतक देहां नूं पोस्टमार्टम लई सिविल हस्पताल बठिंडा भेजा गया जबकि सारे 7 जख्मियों नूं इलाज लई एम्स बठिंडा च दाखिल करवाया गया। पुलिस मृतकों की पछाण करन ते हादसे के असल कारणों का पता लगाउण लई अगली कार्रवाई कर रही है।

0: उधर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा तो पहला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय शाहराह नंबर 44 ते वाहनों की आवाजाई नियमित करने लिए एक नवी सलाह जारी की है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल जम्मू तो रवाना होगा। इधर श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में दक्षिण पछमी मानसून के अगे वधन के मद्देनजर कल तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के कुछ हिस्सों अज भी हल्की तो दरमियानी वर्खा हुई है। सरहदी जिले पठानकोट भारी बारिश कारण पानी भर गया जिथे अज घट्टो घट तापमान 23.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया जो दोवे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेश दोवे सब तो घट है। चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला वाले ट्राई सिटी च भी अज लंबी उड़ीक मगरों बारिश हुई। इस दौरान पंजाब के जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने दसिया कि सूबे दी नदियां दे नाल लगदे 132 कमजोर थावां दी पछाण की गई है ते मानसून दौरान कमजोर खेतरां नूं हड़ वर्गी स्थिति तो बचाउण लई जंगी पद्धर ते मजबूत किया जा रहा है। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म होईआं। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNE जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दुपहर 1:40 ते। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:15 हुए हैं। लीजिए कुछ फिल्मी गीत सुनिए। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त और साथियों की आवाज़ों में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से ये गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आशा भोसले को सुनते हैं, फिल्म का नाम है दो बदन।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 1:30 हुए हैं। अब हमारा अगला प्रसारण हम आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुलीला सफर, बस थोड़ी ही देर में।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओ, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेलतीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियाँ और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने

बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं ये कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है सिर्फ मूछों को लेकर, संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलतफहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुशफहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि गलतफहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थी। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मूल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलतफहमियों पर आधारित थी जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे, तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

फिर से कोई किसी के ना खेले।

देवेन वर्मा, और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी, तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेलती देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंतीमाला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंतीमाला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी।

दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने

से पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

की कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्म आया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओ, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

पालेकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाजें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं, तो बदले में उन्हें भी आप

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4,

थे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला हैं, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले

0: मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision.

0: become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया।

0: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: एक रात की स्वयं का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ। और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
2: जी हाँ, बिल्कुल
1: हाँ। और भीगने का अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
2: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।

0: क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है
1: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
0: प्रतिस्पर्धा चलती है बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है, आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है, आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती, आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड को अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं,
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है, कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
0: मैं
1: उसको पीछे खींचे, आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है,
0: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो, आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें, तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए, और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी राय मांगते हैं, फिर वो जब कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया,
1: जी है ना, आप बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले और
1: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करिए
0: व्यंजन लेके आई
1: जी, बिल्कुल मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में, सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आती है पकौड़ों की, तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन से बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच ले कल्पना करके उसको हम खा ले,
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम,
1: बिल्कुल। तो एक गीत सुन लेते हैं,
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर।
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं, और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते,
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल।

0: यही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, या उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं, ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती की, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे शोभा, तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
0: बिल्कुल। अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन।
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
1: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज

0: के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाएं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक महिला है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
0: तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: के इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा है उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्र युक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
0: कि कैसे इसको रखना है और ध्यान रखना है।

0: परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके
1: बिल्कुल
0: धब्बे जो है
1: हाँ
0: स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ।
0: हाँ।
1: एक गीत सुन लेते हैं ना।
0: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ,
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ, वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है।

0: इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और कि कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
1: प्रतियोगिता
0: चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा

0: अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है, वो कोई भी प्रतियोगिता।
1: मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है जी, भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
1: और वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तमन्ना नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन, और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत

0: हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बना कर लेकर आए हैं हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार बहुत शानदार,
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े छान के निकल ही रहे,
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी

0: पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें। तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है। सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो पकौड़े बहुत खाली हैं, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ, ठीक से उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख

0: से कम प्रतियां नहीं निकलती थी।
1: बिल्कुल।
0: और वो पढ़ाई लिखाई का युग था, तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया। लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3000 से 3500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षण में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है,

0: लाशें एक तरफ गिर रही हैं, तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के संदर्भ में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंगी है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ।
1: जी
0: और

0: मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी,
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून

0: में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग्य की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
1: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
0: जी।
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
0: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
1: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
1: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
1: जी।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है।
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाए।
0: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं
0: जी।
1: सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा
0: जी। जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
1: जी,
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर

0: उपदेश दे दिया। लेखक ने, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थे।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी, जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थी और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव,

0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विष में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आगे, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त हो

107.9 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स

0: दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी

0: सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गाना बोल है नीता फाजले के और संगीत है उषा खन्ना का।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनुरोध फिल्म का ये गाना। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रे में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं, इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा

0: दोस्तों अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। विभिन्न कार्यों का करने के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्दी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेह नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताजे और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है,

मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थ था, लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि। बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सिंह, बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।
2: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
3: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
2: ये आकाशवाणी है।
3: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
2: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
3: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
2: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
3: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
2: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
3: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
2: ये आकाशवाणी है,
4: आकाशवाणी है।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया

0: तुषार देवतामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी

0: तेजस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती हैं, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?

0: ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी,
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
3: सर। धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली

0: श्रृंखला का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला?

0: ऐसे क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी कोई
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
0: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी,
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें बच्चे और मर्द, गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
5: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
5: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
5: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल।

अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ लूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन न जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने गए हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार ले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने

0: वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियां नूं रखण दा प्रबंध कीता गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके दा लाभ लै सकदे ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तों सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 0172-260-6125। सूचना समाप्त हुई।
2: आओ हुण सुणदे आं आशा भोसले ते मुहम्मद रफी दी आवाज़ां च आराधना फिल्म दा गाना बोल ने आनंद बख्शी दे ते संगीत है एस डी परमंदा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थलसेना प्रमुख बने। थलसेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692

0: में करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: वीबी जी राम जी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह

0: जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस राज्य की जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया जिनमें 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत सरोवर तैयार करने पर 223 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एवं विधायक शैली चौधरी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मंत्रीगण विधायकों तथा जनता से जुड़े। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है।
3: इस महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। बहुत सारे दल जो वायदा करते हैं जो घोषणा करते हैं उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है।
1: उन्होंने कहा कि चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग का 1,112 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो या बड़ागढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण, पिछले 11.5 वर्षों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं।
3: पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का अवसर केवल नारायणगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं है बल्कि स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सक दिवस पर देश एवं प्रदेश के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्करों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के महान चिकित्सक, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट प्रशासक एवं दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता डॉ. विधान चंद्र रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। उन्होंने कहा कि डॉ. रॉय का यह विचार कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा नारायणगढ़ से विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

0: हिसार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा व विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहे। हिसार जिले में 4 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा कि हिसार में 11 अमृत सरोवर हैं, जिनमें से एक अब हांसी में चला गया है।
1: हिसार की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अमृत सरोवर है वो टोटल वैसे पुराने हिसार की तो 11 थे, अभी हिसार क्योंकि हांसी अलग बन गया, जब ये मंजूर हुए थे तो 11 थे। और इसी तरीके से अगर आज हिसार की बात करूं तो टोटल 4 जो सरोवर है उनका उद्घाटन विधिवत रूप से किया है।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पूरे करते हुए हम लगातार प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों तथा पलवल के नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार कार्य के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि पलवल जिला के नागरिक अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप प्रदान किया गया है।
2: सिविल हॉस्पिटल को 7 करोड़ रुपए की लागत से उसका रेनोवेशन हो, या हमारे पहले किस प्रकार से तालाबें अब दब चुकी हैं गांवों में, लेकिन उसका सौंदर्यकरण करके उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कर रही है। उसको लेकर ही आज हमारे पलवल जिले की 24 ऐसी तालाबों को अमृत सरोवर योजना के माध्यम से सजाया जा रहा है।
0: अंबाला के धनौरा गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 4 वर्षीय मासूम निर्वैर की मौत के बाद वकील परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वासु रंजन ने हरियाणा और पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन को 30 दिनों के भीतर सभी खुले बोरवेल सुरक्षित रूप से बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा है, क्योंकि खुले बोरवेल मासूम बच्चों की जान के लिए लगातार गंभीर खतरा बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थलसेना प्रमुख बने। थलसेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ नहीं। सुरक्षित जीवन होम बिल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने मौके कहा, इस मुहिम ने देश के समुचे विकास को तेज किया है। पंजाब समेत देश भर में विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया। पंजाब सरकार वालों आज संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना की शुरुआत। पासपोर्ट अर्ली फीस में वाधा अज तो लागू होया। बठिंडा डग वाली कौमी शाहरा ते अज सवेरे एक सड़क हादसे में राजस्थान के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 8 जख्मी। मौसम विभाग ने कल तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन को एक नई दिशा दी है, देश के समुचे विकास को तेज किया है, नागरिकों को भी मजबूत बनाया है। डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने मौके श्री मोदी ने कहा कि इस पहलकदमी का प्रभाव लोगों के जीवन के हर पहलू से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अदायगियों के सीधे लाभ तबादले राही सरकारी सहायता पारदर्शिता सीधे लाभपात्रियों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के हर कोने में नवीनता लिया है। श्री मोदी ने कहा कि पहलकदमी ने सिक्ख्या सेहत खेतीबाड़ी व्यापार ते सरकारी सेवावां च भी सुधार कीता है। इसे तहत मोहाली जिले के रहने वाले ललित कुमार ने डिजिटल इंडिया

0: जा रहे सन जख्मियों ने इलाज लिए एम्स बठिंडा च दाखिल करवाया गया। पुलिस अगली कार्रवाई कर रही है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हैं। दो मुलजमान को 7 आधुनिक पिस्तौलों और 40 जिंदा कारतूसा समेत गिरफ्तार किया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गोपी सिंह भुल्लर ने वेरवे सांझे करते हैं दसिया
1: सारे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क के विच ही आए हैं। वायर ड्रोन प्री डेस्टिनेड लोकेशन के उत्ते ड्रॉपिंग हुई है। तरन तारण के बैकग्राउंड वाले दोनों दोषी ने इस मेन मॉड्यूल नूं चला रहे सीगे। जिहड़ी इंपोर्टेंट गल है कि जिहड़ा गुलबाग सिंह हैगा 12वीं पास है 26 साल का हैगा ई एडिक्शन सेंटर चला रहा भाई मन सिंह रोड से सुल्तानगंज। साडी इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है।
0: उत्तराखंड के मदरसा सिक्ख्या सिलसिले में अज तो एक बड़ा बदला लागू होगा। नवे सिलसिले तहत उत्तराखंड मदरसा सिक्ख्या बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। सूबे के सारे घट गिनती विद्यक अदारे नवे ढांचे अधीन काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने सिक्ख्या सिलसिले में होर आधुनिक पारदर्शी तो बराबर बनाने वाले एक अहम कदम चुकया है। समाजिक न्याय घट गिनती बारे मंत्री खजान दास ने दस कि सारे मौजूदा मानता प्राप्त मदरसों उत्तराखंड घट गिनती वाले सिक्ख्या अथॉरिटी अधीन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रबंध सिर्फ मुस्लिम भाईचारे तक सीमित नहीं होगा सगो सिख जैन बोधी ईसाई और पारसी भाईचारे से संबंधित घट गिनती विद्यक संस्थानों से भी बराबर लागू होगा। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा तो पहले जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय शाहराह नंबर 44 से वाहनों की आवाजाही नियमित करने लिए एक नवी सलाह जारी की है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल जम्मू तो रवाना होगा। इधर पठानकोट पुलिस ने भी श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर चौकसी बता दी है। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर प्रजीत वालिया ने जिले के हद अंदर पैदे हल्के च किसी भी व्यक्ति वालों अपने पशुओं सड़कों के जनतक थावां ते ना छड़न बारे हुक्म जारी किए ने। हुक्मां च कहा गया है कि जेकर किसी व्यक्ति ने इस बारे सूचना सांझी करनी है तो वट्सएप नंबर 9642225 ते लोकेशन ते फोटो भेज सकते हैं। यह हुक्म जारी होने तो अज तो लैके अगले महीने तक जारी रहेंगे। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के अगे बढ़ने के मद्देनजर कल तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कई थावां पर भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की तो दरमियानी बारिश हुई है। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने मौके कहा इस मुहिम ने देश के समुचे विकास को तेज किया है। पंजाब समेत देश भर में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून अज तो लागू होया। पंजाब सरकार वालों अज संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना की शुरुआत। पासपोर्ट अर्जी फीस में वाधा अज तो लागू होया। मौसम विभाग ने कल तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ च कई थावां पर भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया। इस प्रदेशक खबर खत्म हुई। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz से यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुन पेश ने कुछ पंजाबी गीत। प्रोग्राम दा पहला गीत पेश कर रहे हैं अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच।

आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो कुछ पंजाबी गीत ते प्रोग्राम दा अगला गीत सुनवा रहे हैं आवाज है हरभजन मान दी।

अरुण, ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ के हर चप्पे में शौर्य मुस्कुराता है। मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की आवाज़ों में आपने नया दौर फिल्म का ये गाना सुना, जिसे लिखा था साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पुष्पांजलि का ये गीत, स्वर मन्ना डे का है।

0: सवेरे वाली गाड़ी, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया था राहुल देव बर्मन ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म सनी का ये गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा गीत था, आर डी बर्मन का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, राही बदल गए। इस फिल्म का ये गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

फिल्म अनोखी अदा का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत उदित नारायण के स्वर में।

उदित नारायण के स्वर में आप सुन रहे थे और प्यार हो गया फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल थे। ये थी आज के जयमाला कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

खबरें खत्म हुई। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसे सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुन पेश ने कुछ पंजाबी गीत। प्रोग्राम दा पहला गीत पेश कर रहे हैं एमी विर्क दी आवाज़ विच।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न, लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: हेलो, हाँ ये 54808 है। कौन, सुषमा? हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं? अरे बड़े भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारे। काम काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं, 50 बार कह चुके हूं, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा, शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा, शाम को फोन करूंगी।
2: अरे मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
1: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजा कर?

0: ढाई बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
1: बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जल्लीकट्टी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
0: जरूर किया जा सकता है। हाँ, आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
1: तो फिर रुक क्यों गई? जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
0: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो दो दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पर लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ तल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती हूँ।
1: तुम ठीक कहती हो उषा, मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूँ। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्की का पाट गले में डाल लिया है।
0: यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्की का पाट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे?
1: नहीं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कोई जिंदगी थी? छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव।
0: हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं, मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है
1: उषा। ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो?
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
1: मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ?
0: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
1: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है?
0: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए, उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलनदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे।
1: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी बैठ जाता है।
0: मैं कहती हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें अकर्मण्य में होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो।
1: हो तो फिर तुम क्या कहती हो?
0: यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है।
1: मगर

0: अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो खिसट खिसट कर चलती है और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है।
1: ओह, आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर, चार रोटी की जगह आप 8 रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे।
0: नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा, घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है।
1: ओहो, आप अजय भाई की बातों में।
0: ओहो, एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया।
2: हेलो
0: अजय। अरे भाई, बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था।
2: हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई, आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खाकर ही चला था।
0: मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पर बरस पड़ी।
1: अब रहने दीजिए ना अजय भाई।
2: ना ना ना ना, अजय भाई से कोई पता ना रखिए। भाभी बताइए, आज आपने अनिल को किस बात पर?
0: अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय, तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ।
2: ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी, दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है।
1: जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं।
2: पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई, अब की बात कीजिए अब की। इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है आप उसे सुनेंगी तो फड़क उठेंगी। क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी है।
1: अजय भाई एक बात बताएंगे?
2: छोटी छोटी दो बताऊंगा, आप पूछिए तो।
1: इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं?
2: ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट।
1: 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं। और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को, जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको आप धरती पर उतार चुके हैं।
2: इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपने असफलता से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार हैं, बस थोड़े फाइनेंस का प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी, इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरा जाओ रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशनड कार होगी, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़े।
1: ब्लू प्रिंट, ड्रॉइंग्स, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन कार, वर्ल्ड टूर, बस कीजिए बाबा बस कीजिए, ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए।
2: भाभी
1: हाँ जय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, ये सब काक्षी घोड़े हैं, यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा
0: हो। उषा ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है।
1: अजय भाई और शुभचिंतक, कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश अब तक कर चुके हैं, इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही अब कर रहे हैं।
0: बस करो उषा, होश में तो हो तुम।
2: नहीं नहीं अनिल, भाभी को जो कुछ कहना है उन्हें कहने दो।
1: हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी, मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत जब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी 2 रोटी का लालच दे, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए, और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
2: जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है
0: ये तुमने क्या किया उषा?
1: मैंने जो भी किया ठीक किया।

0: भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
1: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

0: करेंगे ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें, और हमें चाहिए भी क्या?
1: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए इस गीत से। अनमोल फिल्म का ये गीत है, रविंद्र रावल के बोल हैं, राम लक्ष्मण की धुन है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और उदित नारायण का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीत के बोल समीर के लिखे हैं और सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ वास्तव फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है समीर ने, सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत आपने सुना। समीर ने लिखा था, जतिन ललित ने सुरों में पिरोया था। फिल्म का नाम था अलबेला। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गाना।

इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम

0: आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी

0: हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा।

0: दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम का गाया हुआ, समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना, साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

अर्जुन का जन्म 1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और

मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है। 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं। यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। हाँ, लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है, और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। वीको टर्म

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टोनर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टोनर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त तो हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते या आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात के 11:05 होए ने। साडे केंद्र तो अज दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।